एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 43 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा मंगल ध्वनि के साथ अब आरंभ होती है।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही पलों के बाद सुनिएगा हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित। इसके तुरंत बाद 6:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष

0: नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम बंधन वार। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्याम का दर्शन किया करे। है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरिनाम का सुमिरन किया करे।

मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी

सुन रहे हैं विविध भारती। आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। झरोखा भी अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 216। 6:45 पर इन दिनों आप सुन रहे हैं संगीत सरिता में श्रृंखला सुने संगीत में तबले का दौर। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस। प्रस्तुति है मनीषा जैन की। सुनिए इस श्रृंखला का 11वां भाग। मतलब इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2:00। पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक रूप कुमार राठौर पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 सुनिए पिटारा में आज के मेहमान लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 सुनिए सखी सहेली। 4 है

फरमाइश। 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। छह बजकर 35 मिनट पर सुनिए संध्या रंजन। 7 बजे जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए। निर्देशक इकबाल अली से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुति है जुबैर खान की। 8 बजे हवा महल में सुनिए नाटिका कटते कगारे, लेखन है चंद्र भारद्वाज का, निर्देशन है गंगा प्रसाद माथुर का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। दस बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। माफ कीजिएगा, 9 बजे आप सुनेंगे आपके लिए कार्यक्रम, फिर 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत कार्यक्रम। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रम, जिन्हें आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। प्रातः के 6:45 हुए हैं। पेश है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का समय विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 हम आपको सुनवाएंगे अंग्रेजी समाचार और राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का वक्त रहेगा 7:05 का।

हरियाणवी गीतों का कार्यक्रम लोक रंग प्रसारित होगा 7:10 पर। 7:40 पर होगा कार्यक्रम सुप्रभात। समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से प्रातः 8 रिले किए जाएंगे। 8:15 से हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती के प्रसारण, जिसमें 9 होगा प्रोग्राम भारत की गूंज। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आज के फनकार।

प्रातः 10 बजे होगा आपका पसंदीदा प्रोग्राम नमस्ते हिसार, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं कुछ स्थानीय समाचार। दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हम पूछेंगे आपसे, जिसके सही जवाब देने पर आप सुन पाएंगे अपने पसंदीदा गीत। साथ ही आपसे साझा करेंगे स्वस्थ जीवन शैली विषय पर अपने कुछ विचार।

11 बजे से हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती के प्रसारण मुंबई केंद्र से। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे प्रोग्राम रंग तरंग। दोपहर 12 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार। विविध भारती मुंबई के प्रसारण प्रसारित किए जाएंगे दोपहर 1:10 से। इसमें आप सुनेंगे 1:10 पर विविध भारती के गीत माला। सदाबहार नगमे प्रोग्राम होगा दोपहर 2:30 पर। 3 बजे का वक्त रहेगा प्रोग्राम सखी सहेली का, सैनिकों के नाम संदेश। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 4 बजे का। इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

शाम 5 बजे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम थारी म्हारी पसंद। साएं 6:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार चंडीगढ़ केंद्र से। 6:20 पर होगा कार्यक्रम भक्ति संगीत। 6:30 पर कार्यक्रम युवा उमंग के अंतर्गत होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का 1299 भाग।

0: किसान वाणी कार्यक्रम होगा 7 बजे, 7:30 पर होगा कार्यक्रम म्हारे गांव, 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे प्रोग्राम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। आठ बजकर 8:45 पर होंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार, 9 बजे रिले होगा विविध भारती से प्रोग्राम आपके लिए, 10 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे ईमेल पर आधारित प्रोग्राम, 11 बजे होंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार, 11:10 पर होगा स्पेशल प्रोग्राम सीरीज ऑन कंप्लीशन ऑफ 12 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट।
1: अर्ज किया है राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया, राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे राजे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने राजे को समझाया,
2: अरे बुद्धू मैं

0: मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया?
1: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर।
0: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
1: हर मंगलवार शाम 5 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
2: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
1: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
1: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
4: Will you be remembered as a great scientist said La Thomas Alva Edison।
0: कोई कला में उत्कृष्ट है?
1: तो कोई संगीत का शिरोमणि?
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए आपके घर में आपके बेहद करीब।
1: कार्यक्रम एक शख्सियत
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। बच्चों की एक अलग दुनिया होती है।
5: चकरक चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम।
1: और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
6: Aeroplane, aeroplane, up in the sky. Where are you going? Flying so high, over the mountain, over the sea. Aeroplane, aeroplane, please take me.
0: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा
1: हर रविवार सुबह 10:30 पर
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

अभी आपने सुनी कार्यक्रम रूपरेखा FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही पलों में 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार दिल्ली केंद्र से, 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फ्रेडरिक मर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जी म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24-2000 वर्षस्य अथ च 25-2000 वर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव

0: प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नई सुबह नई सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी सार कार्यक्रम लोक रंग के साथ। आज के कलाकार हैं वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया और साथी। कार्यक्रम की शुरुआत में या रागनी

0: कार्यक्रम की अगली रागनी भी इन्हीं आवाजों में।
1: हे भाई गोरे गोरे रंग का गुमान ही क्या बावरे, रंग तो पतंग जैसा कल उड़ जाएगा, धूमे कैसे

பை முசுக்கலி வேணாவோ இசு கரமே.

की लगी नीत भजन पे वो नाता जोड़ के श्री लक्ष्मी चंद जी।

0: ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज के कलाकार हैं वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया और साथी।
1: हे नो बोली करा गोल गोफिया क्या रखा।

0: नया बेहतर है
1: क्योंकि तुम ही हो,
2: किंतु पुराना बेहतरीन।
3: दिल चीज़ क्या है?
0: नया श्रेष्ठ है
1: केसरिया तेरा,
2: किंतु पुराना श्रेष्ठतम।
0: नया उत्कृष्ट है
1: तेरी गलियां,
2: किंतु पुराना अनमोल।
3: चुरा लिया है तुमने जो दिल को,
0: नया अनूठा है
2: किंतु पुराना अनुपम।
0: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे,
2: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
0: हर बुधवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। क्या आप परेशान हैं?
1: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
0: क्या आप खुश हैं?
3: आज मैं ऊपर।
2: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
1: पापा के नखरे नूजी कर दे।
0: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
1: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
2: या आप प्यार में हैं?
1: पहला पहला प्यार है।
0: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
1: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
2: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
0: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
2: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग FM बैंड 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। सुबह के 7:41 हुए हैं। अब समय है सुप्रभात।

सुप्रभात में सबसे पहले सुनिए आज का पंचांग। आज है 11 जून 2026, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, सूर्योदय का समय रहा 5:44 का, सूर्यास्त का समय रहेगा 7:08 का। अब सुनिए आज के मौसम के बारे में। हिसार में आज मौसम गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 43 से 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 31 डिग्री के आसपास रह सकता है। दोपहर के समय तेज धूप और लू जैसे हालात हो सकते हैं। ऐसे में श्रोताओं, दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक जरूरत ना हो तो बाहर निकलने से बचें। पानी का सेवन लगातार करते रहें, नींबू पानी, छाछ और फलों का सेवन करते रहें और हल्के सूती वस्त्र पहनें।

0: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताजा खबरें। समाचार
1: कुछ इस प्रकार है, और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
2: मैं अलबेली घूमू अकेली।
0: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
3: अभी न जाऊं छोड़ कर।
1: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
0: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
1: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
4: अब सुनिए रामचरितमानस के चंद श्लोक। केहरि कंधर चारु जनेउ बाहु विभूषण सुंदर तेउ करिकर सरिस सुभग भुज दंगा कटे निशंग कर सर गोदंडा। सिंह की सी गर्दन थी सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सोन के समान सुंदर भुज दंड थे, कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे।

अब प्रस्तुत है आज का सुविचार। सफलता का रहस्य लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प में छुपा होता है, अर्थात कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय आवश्यक है। हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों और असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहकर निरंतर प्रयास करते हैं, वे अंततः सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए।

श्रोताओं, वक्त हो चुका है हमारे प्रेरक प्रसंग का। एक बार एक बच्चा सुबह सुबह घूमने के लिए जा रहा था, तभी वहां पर मौजूद कुछ बंदरों ने उसे घेर लिया। भयभीत बच्चे ने आक्रामक व्यवहार को देखकर भागना शुरू किया। तभी वहां से गुजर रहे एक सन्यासी ने उन्हें भागता देखकर कहा, रुको, डरो मत, उसका सामना करो, पलटकर खड़े हो जाओ। सन्यासी की बात सुनकर बच्चा रुक गया और बंदरों की तरफ मुड़कर खड़ा हो गया। जैसे ही बच्चा सामने खड़ा हुआ, बंदर थोड़ा डरे, थोड़ा पीछे हटे और अंततः भाग गए। निष्कर्ष, जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, उसे पीठ दिखाकर भागने से मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। यदि हम दृढ़ संकल्प के साथ उनका डटकर सामना करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को भी हरा सकते हैं।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का सुप्रभात कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आशा है आज का पंचांग, मौसम की जानकारी, प्रेरक प्रसंग, सुविचार आपके दिन की सकारात्मक शुरुआत करने के लिए बहुत सहायक रहेंगे। याद रखिए, हर नया सवेरा अपने साथ नई उम्मीदें, नई

सर और नई ऊर्जा लेकर आता है। इसलिए मुस्कुराइए, सकारात्मक रहिए और अपने हर कार्य को पूरे मनोयोग से कीजिए। इसी शुभकामना के साथ आपका आज का दिन सुख, शांति, स्वास्थ्य और सफलता से परिपूर्ण रहे। मैं आपकी अपनी रेडियो हमसफर प्रीति ढिंढोरिया लेती हूँ इजाजत सुप्रभात कार्यक्रम से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुप्रभात एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। सुबह के 7:59 हुए हैं। अब समय है समाचार प्रभात का, जो अनुप्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
3: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा

0: देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10.82 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक अपारा मयारी इलाज बेहतरीन हस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10.55 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं

0: सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
5: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है देवेंद्र त्रिपाठी।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रुपये तक बढ़ा। दैनिक

0: भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मुरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट प्रकाशित की है खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना।

कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहाकार, तू है आग मिलखा, ओ बस तू भाग मिलखा। हर छोड़ दे बीते कल की डोरी, काट दे रस्सी सुतली डोरी, तुझसे पूछेगी ये मट्टी करके सांस सांस को भट्टी। अब

दरिया मोड़ दे आग का दरिया, कश्ती ओ कश्ती ओ डूब जाने में ही है हस्ती। हो जंगल आज शहरों से है तेरा दंगल, अब तू भाग भाग भाग भाग भाग मिलखा, अब तू भाग मिलखा।

0: आपके भाग में लिखा।
1: अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल, थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चे के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

खेल हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

चित्रलोक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी फिलॉसफी के साथ, संघर्ष फिल्म के इस गाने के साथ। रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला की आवाजें, समीर के बोल हैं और म्यूजिक है जतिन दिलिप।

ओके जानू फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना ए आर रहमान श्रीनिधि वेंकटेश की आवाजों में, गुलजार के बोल और म्यूजिक ए आर रहमान का। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

बच्चों के हैं तीन काम, खेल कूद, पढ़ाई और आराम। इनमें से सबसे जरूरी हमेशा रहेगा खेल कूद का काम। पसीने में लथपथ, पार्क के एक कोने से दूसरे कोने तक की जोर की दौड़, थकान के बावजूद सबसे ऊंची आवाज लगाएगा कौन? बच्चों के यही खेल कूद की तो बातें हैं जो उन्हें बनाती है मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग।

बच्चों की इस खलबली को आप सुन रहे थे भूतनाथ फिल्म से। कौस्तव घोष, अपर्णा भागवत, भारवन सुरेश और स्नेहा सुरेश की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, म्यूजिक विशाल शेखर का। इस खलबली को जारी रखते हैं इस अगले गाने के साथ। इंटरनेशनल प्ले डे पे जारी है बच्चों की खलबली।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने में भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

श्रेया घोषाल, सुजैन डिमेलो और रूप कुमार राठौर की आवाज में सुन रहे थे वीर फिल्म से आप ये गाना, गुलजार के बोल, साजिद वाजिद का संगीत।

पैपॉन की आवाज में मेट्रो इन दिनों फिल्म से ये गाना, संदीप श्रीवास्तव के बोल, म्यूजिक है प्रीतम का।

خبردار میرا جو شہر ہے تیرا شہر اب رہا تھا.

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अनवर फिल्म से, रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाजों में सईद कादरी के बोल, म्यूजिक है मिथुन का।

0: अनवर फिल्म से आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर की आवाज में ये गाना। आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है रूप कुमार राठौर पर, तो जानिए इनके बारे में कुछ बातें, कुछ किस्से इस कार्यक्रम के बाद यानी 9:30 पर, जिसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज रात 9:30 पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुख

आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1950 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम था दिल्ली से आए
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने भी फोन किया कि मेरे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाने जाके नहीं एक लाइन सुना करते थे, दो लाइन चंदा मामा दूर के पूरे पकान दूर के। मैं उसकी ट्यून बना ली चंदा मामा दूर के पूरे पकान दूर के।
1: आप खाए थाली में पूरे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई है अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद ही इज ऑल्सो प्लेबैक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज्यादा एक्टिव था तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौर एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौर ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

0: पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौर को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौर की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।
1: ऐ जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस एक ग्वालियर टैंक पे, एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहां पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख से था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफी म्यूजिशियनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज्यादा होती थी rather than gossip। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज, जो तबले की जो पहली आवाज या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पे डाला कि अगर मैं रो रहा हूं और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज मुझे सुनाई दी और मेरी आंख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा। और फिर खान साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: महाराज जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कौन कौन आते थे?
1: अब्बा जी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोजर हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमी अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और कौन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीजें जो है वो देखने से आई, कुछ चीजें सीखने से आई, और कुछ चीजें जो है अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, खासतौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सबको देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एक लव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफी चीजें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीजें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गजलें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला, उसमें से ये एक चीज जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बड़ा याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहां मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में,
0: और वहां पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई, उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही, और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौर को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: जमाना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश,

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। सुबह के 10 बज चुके हैं। अब समय है आप सभी के प्यारे दुलारे कार्यक्रम नमस्ते हिसार का। आकाशवाणी हिसार के इस प्यारे कार्यक्रम नमस्ते हिसार में मैं आपकी अपनी रेडियो हमसफर प्रीति ढिंडोरिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न उत्साह से भरपूर होंगे। हर दिन अपने साथ एक नई उम्मीद, नए अवसर और नई कहानियां लेकर आते हैं। इन्हीं नई बातों को आपके साथ साझा करने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। हिसार की धरती अपनी समृद्ध संस्कृति, मेहनतकश लोगों और आत्मीयता के लिए जानी जाती है। ये शहर केवल इतिहास और विरासत का प्रतीक नहीं है, बल्कि आधुनिक विकास और नई संभावनाओं का भी केंद्र है। तो अगले घंटे हम बात करेंगे हिसार के स्थानीय समाचारों की, गतिविधियों की, जानेंगे मौसम का हाल और स्वास्थ्य संबंधी बातें भी होंगी। पूछे जाएंगे आपसे दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न जिनका जवाब देना होगा आपको, और जो सबसे पहले जवाब देगा उसी श्रोता की पसंद का गीत सुनवाया जाएगा हमारे आज के कार्यक्रम में। तो चलिए जीवन की भागदौड़ से कुछ पल निकालते हैं अपने लिए और करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय समाचारों के साथ।

श्रोताओं, कल भी हिसार में भीषण गर्मी रही, पारा 43 के पार रहा और कल रात फिर से बूंदाबांदी की संभावना है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खिचड़ ने बताया कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 14 जून तक परिवर्तनशील रहने व बीच बीच में आंशिक बादलवाई तथा हवाओं की दिशा में बदलाव की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में गिरावट परंतु रात्रि तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के जो एमडी हैं विक्रम सिंह, उन्होंने कहा है कि छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बिजली बिल में कमी लाई जा सकती है। आपको पता है आजकल गर्मी का मौसम है तो एयर कंडीशन वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिसकी वजह से तापमान घर का भी बढ़ता है और बिजली पर भी लोड काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो एमडी विक्रम सिंह ने सभी को सजेस्ट किया है कि आप छोटी छोटी सावधानियां अपना करके बिजली बिल में कमी ला सकते हैं।

फीफा विश्व कप 2026 एक नया अध्याय। आज से आरंभ हो रहे फीफा विश्व कप अपने आप में बेहद मायने रखता है। इस विश्व कप की मेजबानी इस बार अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा तीनों देश मिलकर कर रहे हैं। नया प्रारूप, इस बार टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 की गई है और इसका फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के ऐतिहासिक कीर्तिमान, सर्वाधिक गोल, जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस के नाम विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक 16 गोल करने का रिकॉर्ड है। महानतम प्लेयर, ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले एकमात्र ऐसे फुटबॉलर हैं जिन्होंने बतौर खिलाड़ी तीन बार 1958, 1962, 1970 विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की है। टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल फ्रांस के जस्ट फोंटेन ने साल 1958 के एक ही विश्व कप में रिकॉर्ड 13 गोल दागे थे।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आपकी अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया के साथ। अब समय है आप सभी के पसंदीदा सेगमेंट का, हमारे सवालों के जवाब देने का। किस तरह से जवाब देने हैं पहले आप ये जान लीजिए। सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9722-53272 इस नंबर पर जाकर सबसे पहले आपको सवाल का जवाब लिखना है, उसके बाद अपना नाम, शहर का नाम जहां से आप संदेश भेज रहे हैं, और उसके बाद आप अपना पसंदीदा गीत हमें लिखकर भेजेंगे और गीत उन्हीं श्रोता का ही पसंद का सुनाया जाएगा जो सबसे पहले अपना जवाब हम तक भेजेंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज के कार्यक्रम में पहला सवाल क्या है।
1: रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो किस भाषा में लिखा गया है? जी हाँ श्रोताओं, प्रश्न को दोबारा सुनिए। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो कि किस भाषा में लिखा गया है? इस प्रश्न के विकल्प हैं संथाली, मुंडा, अवधि, संस्कृत। एक बार विकल्प दोबारा सुनिए, संथाली, मुंडा, अवधि, संस्कृत।

0: श्रोताओं, हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है अवधि।
1: और इस प्रश्न का सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अवनी प्रियांशी, रेयांशी, ओजस अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना। ये सबसे पहले जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं और सुनना चाहते हैं राजा और रंग फिल्म का गीत। इनकी पसंद का गीत सुनवाया जाएगा, लेकिन पहले हम जान लेते हैं हमारे और कौन कौन से श्रोताओं ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। ये हमारे श्रोता है ग्राम मामना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा। और ये श्रोता है गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्यान, शमशेर भ्यान, सुरेंद्र भ्यान, मनोज भ्यान। नरेंद्र सिंह नेगी, ये है डोगरान मोहल्ला हिसार से। ये हमारे श्रोता है विनोद टेलर, साहिल दहिया, कृष्णा कान्हा, लड्डू, ममता व समस्त दहिया परिवार, गांव पनिहार चक हिसार से। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। गोंदर करनाल से किरणपाल, बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी देवी। और ये श्रोता है मंटू शर्मा, शेरड़ा गांव, तहसील भादरा और जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। ये तो थे हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब देने वाले श्रोता। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न भी जान लेते हैं हमारे श्रोता की पसंद का गीत सुनने से पहले।
0: कौन सा विश्व विरासत स्थल अलाई दरवाजा परिसर में शामिल है? श्रोताओं, प्रश्न को दोबारा सुनिए। कौन सा विश्व विरासत स्थल अलाई दरवाजा परिसर में शामिल है? इसके विकल्प रहेंगे हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, लाल किला। विकल्प को दोबारा सुनिए, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, लाल किला।
1: तो श्रोताओं, इस प्रश्न का जवाब हमें लिख

भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9729253272 पर। चलिए सुनते हैं हमारे पहले प्रश्न के सही जवाब देने वाले श्रोता की पसंद का गीत।

गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप बेबी किरत अवाना ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा मंटू शर्मा गांव शेरडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत गुरशब्द सिंह राहुल हांडीखेड़ा से राधेश्याम शर्मा जी।

गांव गोंदर करनाल से किरण पाल, बुम्बक तेजपाल, कृष्ण पाल, सुमन, सोनिया, पूनम, रोशनी देवी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सब बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
4: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
5: हर सुबह एक मौका है
6: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
5: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
6: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
5: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
6: आकाशवाणी हिसार के साथ।
7: राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
5: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
6: रोज सुबह 7:40 पर,
5: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
8: FM बैंड 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आज के डिजिटल युग में जब बच्चे अधिक समय मोबाइल और स्क्रीन पर बिताने लगे हैं, यह दिवस उन्हें खुले वातावरण में खेल कूद के लिए प्रेरित करने का संदेश देता है। खेल न केवल बच्चों के लिए बल्कि हर आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य और खुशहाली का माध्यम है। तो चलिए खेलें, सीखें और स्वस्थ रहें, यही अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का मूल उद्देश्य है।

दोस्तों, स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता। स्वस्थ जीवन शैली। आज का व्यस्त जीवन हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है और आज के इस व्यस्त जीवन में से हर व्यक्ति स्वस्थ और खुशहाल रहना भी चाहता है, लेकिन इसके लिए केवल दवाइयां ही नहीं बल्कि संतुलित और अनुशासित जीवन शैली आवश्यक है। स्वस्थ जीवन शैली का अर्थ है सही खान पान, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि अनेक बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करती है।

स्वस्थ जीवन की शुरुआती सुबह जल्दी उठने से होती है। दिन की शुरुआत कुछ मिनट योग, प्राणायाम या फिर तेज चाल से टहलने से करें। वयस्कों को सप्ताह में कम 150 मिनट शारीरिक गतिविधि करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे हृदय स्वस्थ रहता है, शरीर चुस्त रहता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। खान पान में हरी सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी को शामिल करें। अधिक नमक, चीनी और तले हुए भोजन से बचें। संतुलित भोजन न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्याओं से भी हमारा बचाव करता है। सबसे अहम बात, सबसे जरूरी चीज ये है कि पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए स्वस्थ खान पान और

स्वस्थ दिनचर्या है, क्योंकि अच्छी नींद शरीर को आराम देती है, हमारी याददाश्त को बेहतर बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करती है। तनाव को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, संगीत, पुस्तक पठन या फिर परिवार के साथ समय बिताना सबसे लाभदायक है। श्रोताओं, स्वस्थ जीवन शैली कोई एक दिन का संकल्प नहीं है, बल्कि जीवन भर अपनाई जाने वाली आदतें हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतें भविष्य में बहुत बड़े बदलाव लाती है। याद रखिए, स्वास्थ्य ही तो सबसे बड़ा धन है। यदि शरीर स्वस्थ है तो जीवन की हर चुनौती आसान लगने लगती है।

दोस्तों, योग योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि स्वास्थ्य और संतुलित जीवन जीने की कला है। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव, अनियमित दिनचर्या और शारीरिक समस्याएं बढ़ रही हैं, वहीं योग हमें तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के सरल मार्ग दिखाता है। प्रतिदिन केवल कुछ मिनट का योग और प्राणायाम करने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। योग न केवल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी बनाता है। अपने दिन की शुरुआत योग के साथ करें और अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और ऊर्जावान बनाएं। कहते भी तो हैं, करो योग, रहो निरोग। यही तो है स्वास्थ्य जीवन का मूल मंत्र। नियमित योग अगर आप अपना

तो स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार समाज को भी स्वस्थ जीवन का संदेश देंगे। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी अपने आप ही स्वस्थ होगा और आपको भी पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता होती है, वहीं पर हमारे विचार भी पॉजिटिव होते हैं, हमारा काम भी पॉजिटिव होता है। और अगर काम पॉजिटिव होगा तो तरक्की निश्चित है।

0: बच्चों की एक अलग दुनिया होती है।
1: चकरक चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम।
0: और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
2: एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन, ओवर द सी, एरोप्लेन एरोप्लेन प्लीज टेक मी।
3: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा
0: हर रविवार सुबह 10:30 पर
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
4: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
5: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
6: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
3: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
6: हर मंगलवार शाम 5 बजे
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
7: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
6: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
3: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
8: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
6: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
9: Will you be remembered as a great scientist, said Lata Masaba Edison।
3: कोई कला में उत्कृष्ट है?
10: भामाशाह।
6: तो कोई संगीत का शिरोमणि?
3: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
6: कार्यक्रम एक शख्सियत
3: हर सोमवार शाम 5 बजे
6: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
11: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते हिसार FM बैंड 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती से अनुप्रसारित कार्यक्रम रंग तरंग।

0: कि क्या जो दीवाना घर से निकल गया,
1: ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया।
0: मेरे दिल पर मुझ पर खफा ना हो, कहीं तेरी भी कुछ खता ना हो, जो ये दिल दीवाना, जो ये दिल दीवाना।
2: मानवी और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म ध्रुव पुत्र की, ये कव्वाली थी, साहिल धीमी के बोल थे, अंगता का संगीत।

0: बेगम अख्तर की आवाज में ये पारंपरिक दादरा गीत आप सुन रहे थे।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितु प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जंग तरंग।

0: ये पॉप गीत आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज में, समीर के बोल थे।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में रहती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनूं,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से। तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

ढोला आयो रे ढोला आयो रे।

शारदा सिन्हा की आवाज में मैंने प्यार किया है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला राम लक्ष्मण ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमें अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आवाज आवाज और गीत रचना है सुखविंदर सिंह की निशा ही दिशा है। इस एल्बम का गीत आप सुन रहे हैं।
1: मोहब्बत मोहब्बत।

तलाश फिल्म का ये गीत था अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में समीर के बूंद संजीव दर्शन का संगीत था। और यही है श्रोताओं आज की रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही है बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुनहरी धड़कन।

0: नैनों में भर के प्यार का कजरा अखियां मलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे,
1: रामेश श्याम फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। जब याद किसी की आती है इस फिल्म का गीत आपको सुनाते हैं, महेंद्र कपूर की आवाज है, राजा मेहदी अली खान के बोल हैं।

0: असर वधिकिया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी जब याद किसी की आती है, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजा मेहदेली खान के बोल थे।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखी ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: शंकर जी किशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी का लिखा ये नगमा आपने सुना फिल्म शिकार से।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वर्गद किया गीत आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर का गाया राजा और रंग फिल्म से। आनंद बख्शी की रचना है।

0: मैं तुलसी तेरे आंगन की सुन गई था आपने सुना लता मंगेशकर आशा भोसले का गाया आनंद बख्शी की बोलियों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। अरे
1: चुपके से दिल दे दे
0: नहीं ते
1: नहीं ते शोरम।

ज्यादा फिल्म का दोगाना आपने सुना किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजों में, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी और इस गीत की रचना की आनंद बख्शी ने। आदमी और इंसान फिल्म का ये गीत है आशा भोसले, महेंद्र कपूर की आवाजें, साहिल जहानवी की।

तो ठकेगा।

0: कर ले हमसे मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत कर ले हमसे मोहब्बत गुजरना चाहे घड़ियां टूटती है पायल तो बनती है हथकड़ियां अरे टूटती है पायल तो बनती है हथकड़ियां
1: मैं हथकड़ियां पहनूंगी।

0: आप सुन रहे थे सुहाग फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में लक्ष्मीकांत बेहलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे थे इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम श्रोताओं यही संपन्न होता है।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो

0: भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, ये तो सही है कि आप जहाँ जहाँ हैं विविध भारती साथ साथ है और साथ है सरगमी नीमों का जादू जो हमारे दिल की हर बात जानता है, कहता है और सुनता है। हमारी खुशियों, हमारी जिंदगी के सफर में शामिल इन नगमों की परवाज का क्या कहना और इन बातों उन शिकायतों का भी क्या कहना जिनमें छुपा छुपा सा प्यार भी नजर आ रहा है, और यही बातें मिलकर बनाती है इस प्रोग्राम को सुरीला सफर। तो अब आज की इबारत से पहले उन श्रोताओं को बता दें जो अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं, इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे पाए हैं, तो लॉग इन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। और अब आपको बता दें आज की इबारत। एक रात दस्तक दी किसी ने, दरवाजा खोला तो देखा जैसे मेरी ही शक्ल, मेरा ही हमसाया, कहने लगा मैं तुम्हारी ही यादें हूँ, रैन बसेरा चाहता हूँ, याद करो वो भोर की किरणों का पंखट पर बसेरा, इसी पंखट पर जब बातें होती थी, एक दिन जब खो गया कहीं कान का बाला, वो सूंधी ओटी, वो खिलौने, वो रेत की नाव, वो झाग के माझी, वो काठ की रेल, वो सीप के हाथी, वो मोम के चाक जो रुके न चले, वो संगी साथी, वो जादूगर का खेल, वो पगडंडी में दौड़ना, जब तुम्हारे आने से मेरी टूटी फूटी नाव सज जाती थी, कभी तुम्हारी मुस्कुराहट को देखते कभी सोचते कि हमसे तो ये पायल ही अच्छी है, काश अपनी आंखों में बसा कर ये तस्वीर रख लो, फिर कोई दिल तोड़ चला। सखियां भी एक एक कर ससुराल चली गई, एक रोज डाकिया डाक लाया, पता चला ये शहर ही अब जिंदगी बन गई और मन गांव में बस गया, शहर में कमरे ज्यादा है, घर बड़ा है, शायद इतना बड़ा कि कोई मिलता नहीं, शहर की इस आपाधापी में कोई पास बैठता नहीं, हाल पूछता नहीं, सुनो चलो उसी मनमोहक गांव में वापस चली जो आज भी वैसा ही है, जिसकी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है। श्रोताओं, आज की इबारत, आज का टेक्स्ट, और अब आपको शब्दों को ढूंढना है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने तो शब्द पहचान लिए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों के बारे में भी लिखा है, तो देखते हैं कि आज कौन से गीत शामिल होते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। दिन के 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अनुप्रसारित। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% के विकास दर हासिल

0: की है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने ओलंपिक की तैयारियों को विकसित भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया, साथ ही विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में खेल जगत में भारत की पहचान और मजबूत होगी।
1: भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट लीग की धरती बनता जा रहा, आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दी।
0: हरियाणा में सिरसा के थाना डिंग और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 88 किलो 970 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 4,50,00,000 रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई में एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में हरियाणा पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बरामदगी न केवल बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप को बाजार तक पहुंचने से रोकने में सफल रही है, बल्कि अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क को भी गहरा झटका पहुंचाने वाली कार्रवाई है। आयुष विभाग द्वारा जींद के ग्राम पंचायत कौंडल गहलव आमरू में योग जागरण यात्रा निकाली गई। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर हमीदुल्लाह ने बताया,
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ताल्लुक से हमारे यहाँ तैयारियां चल रही हैं और इस सिलसिले में 8 से 10 तक प्रत्येक गांव में योग जागरण यात्राएं निकाली गई हैं। 11, 12, 13 को हमारे यहाँ प्रशिक्षण शिविर चलेगा, जिसमें ब्लॉक लेवल पर भी प्रोग्राम होंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। इसके अलावा 15 जून को योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 16, 17, 18 में अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारियों सभी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाएगा।
0: आज हरियाणा में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कुरुक्षेत्र में सुबह करीब 3 बजे तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है, जिससे मौसम भी सुहावना बना हुआ है। कुरुक्षेत्र में समाचार लिखे जाने तक हल्के बादल छाए हुए थे। अंबाला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवा के साथ बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कहीं कहीं जैसे कि कुरुक्षेत्र में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो समाचार लिखे जाने तक हल्के बादल छाए हुए थे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए गए आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। दिन के 1:10 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
4: विविध भारती के सुनहरे सफर में जहां बचपन फिर यादों के सहारे लौट आया है, वो आजादी, वो स्वच्छंदता अब लौट के नहीं आने वाली। जब नींद बरसते थे, भीगते निकल जाते थे और साथियों के साथ चपाक छई खेलते, बहते धारे में कागज की नाव चलाते, दिन भर बिना भूख प्यास की चिंता के नदी के पार जाकर खेतों से खरबूजे चुराया करते। एक श्रोता और लिखते हैं कि आज की इमारत केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि अतीत की स्मृतियों और आधुनिक जीवन के अकेलेपन का एक बेहद खूबसूरत और मर्मस्पर्शी दस्तावेज है। लेखक इन्होंने लिखा है कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ शहरी चकाचौंध के पीछे छिपे खालीपन और ग्रामीण जीवन की निश्चलता के बीच द्वंद को हमने उभारा है। आखिरी पंक्तियां शायद हमें दुनिया से अलग

गांव बसा रखा है। ये दर्शाती है कि भले ही भौतिक रूप से इंसान शहर में कैद हो, लेकिन उसका मन आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये अंत निराशा में भी एक खूबसूरत उम्मीद और सुकून देता है। गांव की तो बहुत सारी यादें होती हैं। श्रोताओं, आपको अपना गांव क्यों अच्छा लगता है और इसकी क्या खासियत है? क्या कुछ है जो आप अपने गांव में अब भी याद करते हैं और क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? तो ये हमें जरूर लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं, बहुत सारे गीतों के बारे में, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना, तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई चीज गांव में कहीं खो गई हो या फिर पनघट पे कहीं रह गई हो, तो आप जरूर बताइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ खास गीत एक अकेलेपन में बैठकर सुनते हैं। गांव में क्या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ तो हमें लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं, शहर और गांव हमेशा से एक नियमित प्रसंग के रूप में किसी भी वाद विवाद के चर्चित विषय के रूप में उभर कर आते हैं। अधिकांश शहरवासी शहर छोड़कर गांव में रहने की कल्पना भी नहीं करते, चाहे कितनी भी दुश्वारियां हो शहर में, वही गांव में रहने वाले मजबूरी में ही शहर का रुख करते हैं और बाद में वहीं के होकर रह जाते हैं। भारत में शहर और गाँव दो अलग अलग संस्कृतियों और जीवन शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ शहर आधुनिकता, गति और सुविधाओं का केंद्र है, वहीं गाँव सादगी, परंपरा और प्रकृति के करीब होते हैं। तो आप बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ ऐसा था जो आप भी आज भी आपकी यादों में बसा है, और क्या कुछ ऐसी चीज है जो आपके गांव की यादगार चीज है।

तो अगर आपने फिल्म देखी है गंगा जमुना तो आप जरूर बताइए, और आपको याद ही होगा तो इनका बाला कहाँ है, कहाँ गुमा है, आप क्या ढूंढ सकते हैं, तो हमें जरूर बताइए अगर आपको मिला हो। वैसे गांव में भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आप पनघट पर गए होंगे, कोई चीज या कहीं गए होंगे, कुछ खो गई होगी, तो कुछ यादें अगर इसे मिले जुले आप साझा करना चाहते हैं तो जरूर करें। और गांव की बहुत सारी खासियत होती है श्रोताओं कि गांव में जो यादें हैं, रेहत का पानी है, या अगर आपको याद हो कहीं जो रेडियो में कोई गीत बजता हो जो आपको अपनी तरफ खींचता हो, या कोई फिल्म ऐसी जो आपने गांव के थिएटर में देखी, क्योंकि गांव में पहले थिएटर कम हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दूं कि गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शकील रहीमी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। इस गीत से पहले सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत आपने सुना जो जीनत अमान पर फिल्माया गया, और सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार आपको बताने हैं। एक और श्रोता ने लिखा, यादें अजीब होती हैं, एक तो बुलबुलाएं आ जाती हैं और आ जाए तो सांस थमने सी लगती है, किसी पुरानी फोटो को देखो जो धुंधली पड़ गई लेकिन उसके पीछे उससे जुड़ी याद हमेशा ताजी मिलेगी। कुछ यादें शब्द मांगती हैं तो कुछ यादें खामोशी, कुछ आवाजें अब भी दुनिया में नहीं पर कभी कभी लगता है कि कंधे पर हाथ रखकर कह रही हूँ अपना ध्यान रखना, वो हाथ जो अब कंधे पर नहीं पर थकान में सहारा बन जाते हैं। यादें हमें एक ही समय में दो जगह रख देती है, शरीर को वर्तमान में और दिल को किसी सुनहरे अतीत में। दुख इस बात का नहीं कि वक्त बदल गया, दुख इस बात का कि वो लम्हे अब दोबारा नहीं जी सकते। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज एक बार फिर काफी लंबा विद्यांश सामने आया है और साथ में लाया है वो बचपन की यादें जो कभी मन को सुकून देती, जब पनघट पंडूरी खेत खलिहान नदी झरने रेत पर उकेरी तस्वीरें सब अपने से लगते थे और हम खुशियों के सिर पल भरे पल जीते थे, लेकिन जब ये छोड़ शहर की ओर चले तो वक्त की लाठी ने धीरे से सब कुछ छीन लिया और दे दिया खालीपन, बस बाकी रह गया तो सुनहरी यादों का गांव मन के भीतर एक कोने में। तो जादूगर की भी बहुत सारी यादें होंगी श्रोताओं, आप बांट सकते हैं, क्योंकि ऐसी यादें तो मेरे पास भी बहुत सारी हैं कि जादूगर आया करते थे गांव में।

प्रदीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये पहला संगीत आप सुन रहे थे फिल्म मागिन से, और एक गीत के हमने संगीतकार आपसे पूछे थे सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि भूल भई पनघट पर अब वो दौर कहाँ जब पनघट पर गांव की गोलियां इकट्ठे होकर दिनचर्या की बातें किया करती थी, अब हर घर पर नील से जल हो गया है पगडंडी थी, अब वो पक्की सड़क बन गई है, मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है, डाकिये की साइकिल की घंटी मूक हो गई है, डाक का स्थान अब मोबाइल मैसेज और ईमेल ने ले लिया है, गाँव के हरे भरे जंगल जैसे माहौल को शहर के कंक्रीट के जंगलों ने उजाड़ दिए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, इस गीत को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस चिंचिलाती धूप में विविध भारती के गानों की बौछार हो रही है, ये कहीं न कहीं हमारे मन को सुकून और दिल को ठंडक पहुंचा रही है, सचमुच ही विविध भारती का ये सुरीला सफर हम श्रोताओं को एक साथ जोड़ता है और जो कि इस कार्यक्रम को रंगारंग दिलचस्प बनाता है, और इन्होंने विविध भारती का शुक्रिया किया है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और श्रोताओं कार्यक्रम तो आपके शामिल होने से ही बनता है। एक श्रोता और लिखती है कि गाँव की अमूल यादें ताजा हो रही हैं, इस इबारत में गाँव का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी का किनारा, मैया की सफर, सूंधी मिट्टी की खुशबू, शुद्ध हवा की शीतल लहरें, अनुपम सौंदर्य, सूर्यास्त, गांव का मेला, खेल खिलौने, मौज मस्ती, गांव में गुजरे बचपन की सभी यादें दिखाई देने लगी हैं, उसी की तस्वीर लेकर आ रहा है ये सुरीला सफर, और कुछ गीत भी इन्होंने बताए। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्द हो सकते हैं रात दस तक, यादें, भोर, पंगट, सूंधी रोटी, खिलौने, रेत के नाम, जी हाँ, और गीत भी बताए।

बढ़िया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आप बताना चाहें तो बताने श्रोताओ, गांव तो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है। यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं। बगीचे से आम चुरा कर चोरी चोरी दोपहर में खाना, रहट का पानी, गांव की क्या खासियत है आपके गांव की। रेडियो की यादें, कुछ थिएटर की यादें, बाइस्कोप की यादें, दिनचर्या, पत्र जो आपके पास आया करते थे, तो क्या नहीं है गांव में। ऐसी बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं। क्या कभी आपने बैलगाड़ी का सफर किया या साइकिल से स्कूल जाते थे, ये भी आप हमें जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है संगीत में होगा, हमने इबारत पढ़ लिए है, हम गांव और शहरों में तुलना करें तो हमें गांव ही अच्छा लगेगा। गांव में अपनापन होता है, वहीं शहरों में भीड़ तो बहुत है पर अपना कहने वाला कोई नहीं। और एक बात, इन दिनों शहरों में शाम के वक्त कुल्फी चाट की ठेलों और अन्य दुकानों में सुंदर लाइट से सजी दुकानें शाम होते ही जगमगा उठती हैं। और वहीं गांव में शांत सुकून के साथ अपने घर के छत पर शाम को लेटे हुए चांद तारों को तकना किसी अद्भुत दुनिया की ओर हमें ले जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मन को छू लेने वाली है हमारी आज की इबारत, हमारी पीढ़ी वालों को झकझोर देती है। बचपन गांव में या छोटे शहरों में बीता, आज बस आडंबर की भीड़ में मात्र एक इकाई बनकर रह गए हैं। अभी भी दिल के कोने में वो मंजर, हरियाली, बाग बगीचे, कुआं तालाब, बरगद की छांव में चारपाई पर लेटना आदि दिल के कोने में छुपी हुई इन्हें शहरी भीड़ में तलाशते हैं, मगर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन याद करके दिल को सहला लेते हैं। मिट्टी की सोनी खुशबू वाली इस सफर का इंतजार है। तो जी हाँ, ये सफर जो है वो तो जारी है। आप भी अपनी बातें कहिए गांव को लेकर, गांव की यादों को लेकर, और गांव आपको क्यों याद आते हैं ये जरूर बताइए।

जी प्यारा सा संगीत निषाद का, और आप कलाकार बता दें। एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफर सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताजा हो गई और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियां वो आंगन में सब कुछ समेटना और रोजगार के लिए हमेशा काम करते रहना। जहां जब रोजगार की बात आती है तो मैया, जिसका गीत हमने आपको सुनाया, नाव भी बड़े साधन है रोजगार का, और हम ऐसी मैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अन्न पाने की इच्छा होती है, शायद इसीलिए गांव और गांव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है, गांव की यादें, बचपन, बिछड़ने, शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी है और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भरे पंखट पे ढूंढो ढूंढो रे साजना, मेरे कान का बाला, बहुत सारे गीत इन्होंने सजाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती है तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूले बिसरी शक्लें, पंखट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था? रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीजें बहुत खाते थे श्रोताओं, और

बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर से। सजन दिलवी के बोल थे और श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जो कभी गांव में गया ही न हो और वो लोग गांव के बारे में क्या जानेंगे, गांव का मिलनसार जीवन, लड़ते झगड़ते दोस्तों का, गांव की जिंदगी क्या होती है वो बातें याद आती है तो दिल में एक कसक सी उठ जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जादूगर एक बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था। खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में एक घंटे तक ये शो हुआ। बात 1976 के सितंबर की है। हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे, बहुत मजा आया था। जी हाँ, तब पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीजें हम खरीद लिया करते थे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे गाँव के चारों तरफ पहाड़ है जिसे एक टुकड़ी होती है, जिसके कारण मेरे गाँव का नाम ठोकर है। मेरे गाँव की लोकेशन बहुत अच्छी है। गांव उत्तर दिशा की पहाड़ी की तलहटी में बसा है। दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गांव तो हमारा जीवन है, इसकी हर चीज हर स्थान हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत सताते हैं। गांव के भोर की बेला में पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं। ये अनमोल पल में बिताए गए बचपन से जोड़े रखते हैं, जिसमें हमारे मन को असीम सुकून और शांति देते हैं। और भी उन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का जो ये सुरीला सफर है, अक्सर लोग गांव छोड़कर शहर में रहने लगे हैं, लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गांव में थी। तो खिलौने वालों की जो यादें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं।

संध्या पर फिल्माया गया दो आंखें बारह हाथ फिल्म का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस गीत के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस गीत को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ मूवी हैं, देखते हैं कि कौन से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, तीन गीत मेरे शामिल हो गए, आज सुना सफर में पुरानी यादें ताजा हो गई। मेरे गाँव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन में, हमारे गाँव में रामलीला होती थी और निम्बाड़ी लोकगीत गंगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था, बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल में शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं, आपने रुला दिया, वो बहुत यादों को जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती हैं ऐसी, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता लिखा है कि यह हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते, इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था, उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे उनकी शक्ति में मैं स्वयं हूँ। उन्हें स्वयं को देखकर अपने गुजरे वक्त को याद करके बहुत खुश होता हूँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आठ गीतों को लिखा और पहला गीत शामिल हुआ जो भूल भय पंघट में, जी हाँ, तो यही तो आपको पहचानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत पढ़कर आपने बचपन में बचपन के साथी याद आ गए हमारे, मन बहुत बेचैन हो रहा है, कौन कौन से साथी बिछड़ गए पता

ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है। बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है, जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीजें हैं जो हमें बचानी है। श्रोता, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है? क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो है वो गांव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन की जो चटपटी चीजें थी उसके बारे में लिखा है कि बैर जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ पके रहते थे, वो कागज की पुड़िया के समान बांध के देने और न्यूज पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लूं बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गांव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था। आवाज सुनते ही सभी साथी दौड़ कर वहां पहुंचकर गाना सुना करते थे।

दादा तो गुजर गए दादी बीमार है, नाना का भी तेरवा आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारण तो तार। शादी का संदेशा तेरा है

यही गीत आप सुन रहे थे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। श्रोता पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब पंखट पर हम सब इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे। बड़े खुशनुमा दिन थे, यादें अजीब चीज होती है, न कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत ने किसी रास्ते से दस्तक देती है और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में, उसकी तस्वीर के साथ। इन सब यादों को, बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं और कलाकार।

पहले फिल्म का ये गीत आपने सुना सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक, और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांद दूध जो नर्मदा नदी पर बसा है वहां दर्शन करने गई थी। वहां नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया, मतलब कल ही नाव में बैठकर आई हूँ।

हमारे श्रोता ने लिखा है, वो दादी के हाथ के मक्के और ज्वार के चूल्हे पर बनी रोटी काश एक बार ही सही खाने को मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं मांगेंगे अपने इस मालिक से।

शुभ ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठती है तो मंदिर से आरती की सुर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है।

सावन गोविल और जलना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। सावन को अन्य दो फिल्मों से इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं तो चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव जरूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीजों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम सुरीला सफर सुन

साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़

0: साथ बच्चों के लिए खेलकूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?
1: अरे शांति मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहें पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहाकार, तू है आग मिलखा, ओ बस तू भाग मिलखा। अरे छोड़ दे बीते कल की बोरी, काट दे रस्सी सुतली डोरी, तुझसे पूछेगी ये मट्टी, करके सांस सांस को भट्टी, अब तू जाग मिलखा, बस तू भाग मिलखा।

हस्ती और डूब जाने में ही है हस्ती। हो जंगल, हो जंगल।

में लिखा, अब तू भाग में लिखा। तेरा तो बिस्तर है मैदान, ओढ़ना धरती तेरी शान, तेरे सरहाने हैं चट्टान, पहन ले।

भाग भाग भाग भाग मिलखा अब तू भाग मिलखा वो गवर बवर है चक्कर चक्कर चक्कर गोदी में उठाया

0: करना है हर हाल। अब तू जाग मिलखा, जाग मिलखा, जाग मिलखा, अब तू भाग मिलखा।
1: अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल, थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चे के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

Então,

खेल हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़े और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकाले, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितु प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फसल बीमा योजना जैसे पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ॉन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस

0: C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
1: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आप

0: जिलों पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमरीका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
1: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और छोड़ लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी

0: मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि

0: की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: कलिंजियानी जी की तर्ज थी एम जी हर्षपत के बोल थे। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितु प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमी।

फिल्म पूर्णिमा में आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को, गुलजार के मौन को सुर में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार में।

0: अपनीपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ गीत भारती पर।
1: शारदा की आवाज में अरविंद बॉय फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। हंसरत जयपुरी के बोल हैं शंकर जयकिशन की तर्ज है। आशा यही है सदाबहार में हुए प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार और आप सुनिए।

0: Haley.
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: दिवस किनका है?
1: छोटे बच्चों का।
0: हाँ। बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले, या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
0: जी बिल्कुल।
1: माता पिता है किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपने बारे में जरूर बताएं।
0: आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बाहर खेलने वगैरह कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए, या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाते हैं?
1: इस बारे में बहुत सारी बातें होंगी और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए?
0: भीमव्वा डोडाबलप्पा शिलेक्या थारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल। और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है,
0: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: और मुझे कुछ कहना नहीं, हम बात करेंगे खुश रहना है, खुश रहने का दिख तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं।
0: तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो, या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के उसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है? तो इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको कान की किस तरह सुरक्षा करके रखें आप।
1: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे।
0: जी हाँ, जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल। तो

0: 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डा बलप्पा शिले के थारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है,
1: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं कर्नाटक में वहां की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेता, जो आपने भी बताया, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानी को अच्छे से समझाया जा सके।
0: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना,
1: हाँ
0: उस तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
1: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं। और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
0: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांवों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है
1: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती। और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ की लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
0: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
1: पारंपरिक कठपुतली कला के जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सके, ताकि जो तोगलू गोम्बेता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है कौशल है वो उन तक भी उसे पहुंचा सके।
0: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है
1: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके दर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो भी परंपरा है उनसे जुड़े हुए होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
0: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलू गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोडा बलप्पा शिले के थारा को भारत का 4वां सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
1: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
0: जी,
1: और एक गीत सुन ले अभी।
0: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और खासतौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि किससे आगे खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतली होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, उनका जो डांस है वो देखने में बड़ा मजा आता था,
1: अजीब अजीब सी आवाजें भी निकालते।
0: हाँ,
1: तो हमारे एक जो श्रोता है वो लिखती है कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है, गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं, सोसाइटीज और बड़े बड़े बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था जैसा आपने बोला,
0: बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है तो बच्चों को जरूर वहां लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाए कि कठपुतली नाम की कोई चीज होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है। और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं, और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उन्हें भी इस चीज के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में, आज जो खेल दिवस है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी भी है, इसलिए खेल की रक्षा करने की खेल को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित करना बहुत जरूरी है।
1: खेल में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए। और हमारे एक श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं, कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है,
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सके। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जाने, पहचाने और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना जरूरी है। और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं, और यही वो समय होता है आरती जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
1: बिल्कुल। और बहुत जरूरी भी है खेल को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो खेलेंगे तो, जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा।
0: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी जरूरी नहीं है, जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी खेले होंगे,
1: दौड़ भाग है, साइकिल चलाना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: लुका छिपी भी खेल लेते, और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा के तोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की गेंद बना ली, उससे मारकर खेल रहे हैं।
1: बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे खेल हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उससे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकलकर खेलना।
0: तो इस दिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम ये गीत सुने फिर आगे बढ़ाएंगे।

बोलो क्या मैं

0: बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में बड़ी रुचि रहती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना जरूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती है कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही है कि खेल हर चीज में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोता जो लिखती है कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने।
0: और इस साल जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल है, परिवार है, व्यवसाय है, उनको याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं। और खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाई समझाई भी जा सकती है ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं जी, बहुत सी ऐसी तरीके की चीजें आप कर सकते हैं, ताकि अब उनको खेलने अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीजें बच्चों में विकसित करते हैं खेल। और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं। और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है, हर बार बच्चे के साथ कोई जाएगी जरूरी नहीं हो पाता। तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले, तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: और बच्चे सीखते हैं किस तरह में साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ में मिलकर खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं।
0: अभी जैसे बारिश का जब मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला कैसे जाता है, उनके साथ बैठ कर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना विकसित होती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता जी लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है, खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है।
1: बिल्कुल,
0: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी, हम उन्हें भी खेल में बदल सकते हैं।
1: और हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए, और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है।
0: बिल्कुल, जब बच्चों को धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही।
1: बिल्कुल, और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी है कभी कभी,
0: भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो चलो एक गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा।
1: मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं,
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश है तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज है, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती है आरती, कि खुश है या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो, इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहां बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी बतानी है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देखकर साथ में आ जाते हैं। वो इतना खुश है हमसे, कहते हैं ना कि हमारे कपड़े, मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे मुझे उसे पसंद किया है, वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना।
0: हाँ।
1: तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव। तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूं या मैं सही हूं, वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं, तो वहां हमें बहुत सारे लाइक मिले।
1: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए,
0: लाइक बढ़ गए,
1: वो उसी में लगे रहते हैं।
0: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते, आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती। ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है, बल्कि हमें यह समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है।
1: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है, कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं, कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीजें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े पलों का इंतजार करते रहते हैं ना, कि चलो ये त्योहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते।
0: बिल्कुल,
1: हर जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
0: और जो लोग खुशियों के लिए आने ढूंढते हैं ना, इस तरह से उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहां जाएंगे तब खुश होंगे, इसकी ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रहे
1: हैं, जीवन है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है पर रात को हम तकिया भी खोते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है, जो सच में हंसता था, लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी सबकी करो और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि मन से किए गए काम खुश करते हैं।
0: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा ये प्यारा सा गाना।

0: बहुत मीठा बहुत सुरीला गीत हमने सुना, और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का दिखावा करना।
1: बिल्कुल, और वैसे भी चंचल अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें, क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है। खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। मैं जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज है हम खुश हैं इसमें, वो चीज होनी चाहिए।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए, अब मैं एक अच्छा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं वहां पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं, और इस बेहतरीन दिखने की वहां पर होड़ सी मची हुई है। खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत सही बात लिखी है।
1: बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की,
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है, और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है, और यही सच्ची खुशी है।
1: बिल्कुल। और श्रोता जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहां वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है।
1: बिल्कुल
0: सही बात है।
1: बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है, लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है। ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने।
0: और भी संदेश है।
1: तो एक और जो मैच होता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अभी तो उसके पोषक भी है, फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है, और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
0: ऐसी बहुत सी मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी है। कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं, और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने के, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में। एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को। जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है। इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो।
1: बहुत अच्छी बात लिखी है उन्होंने। और इसी साथ एक और हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुश ही रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूं, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूं, तो आप सभी की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं, उनको सुनकर हमारे श्रोता, हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
0: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है, कभी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीली, जैसे ना कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ नहीं हो रही तो बस माचिस की तीली लेके करने लगे तो वो बहुत खतरनाक।
0: और महिलाएं हेयर पिन घुमाती
1: हैं, हेयर पिन, चाबी लेता है, कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना बहुत समय तक, ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना
0: जी,
1: जो हमारे कानों की होती है वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा हम अगर शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा।
0: देखो जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी नुकीली चीजें
1: आप इनका तो कभी, आप इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीजें प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, ये पुराने जो होते हैं वो बड्स, उसमें वो फंगस भी होती है, तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये सब चीजें आप ना प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज सी आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है कि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे, तो आप बहुत ज्यादा घंटों आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएंगे,
0: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है तो आपका जरूरी काम छोड़ सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करना है।
1: सबसे बड़ी चीज है, आप अगर आपको सुनी

0: रहे हैं आप, उसको बहुत जरूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज को कि आपको बाकी आवाजें ना आए। और दूसरी चीज, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए। आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिया, थोड़ी देर बाद अपने दूसरे कान में लगाए, इससे क्या होता है ना, कान आपका ऐसे पर्दे पर उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, कृपया करके अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि कुछ हमें चाहिए, ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए। आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीजें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन कर अच्छे से उसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जांच होती है वो भी जरूर करवाइए।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: से तो प्यार।
1: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है मनीषी पाठक।

एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बार कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम

0: प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, उनको ये सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा है। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल, हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूंगा कि फिलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहां पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामढ़ी में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, सीएपीएफ बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
0: जी जी।
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
0: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहां थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
1: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था।
0: जी, जी।
1: तो कैपसेक के अंदर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी, बॉर्डर

0: स्टार्टिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूं तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था। तब हम आईटीबीपी को देखते थे, हमें सीआरपीएफ की जानकारी थी, बीएसएफ की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे। पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
1: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
0: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं। खास तौर पे भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहेंगे या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं और ये एक चैलेंजिंग टास्क है और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
1: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का
0: जी
1: इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी,
0: बिल्कुल
1: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
0: बिल्कुल
1: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकते हैं इन देश के ना हो किसी और देश के हो, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
0: हमने अपने एक्सपीरियंस से। दूसरा, अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम सीसीटीवीज को यूज कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं उसके अलावा जो हमारा जवान वहां पे खड़ा है वो उस चीज में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरीके की गतिविधियों के बारे में।
1: राइट देन, तो आप अभी सीटीसी में हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहां पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल,
1: और किस तरह की ट्रेनिंग आप
0: बेसिकली जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं और भी बहुत गतिविधियों को हम वहां पे करते हैं
1: जी। और जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था तो वहां पर ये डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहां पे जो है वहां के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुंचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव।
1: और आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है आप सीटीसी में, ये कितने समय से है?
0: मेरे को अभी एक साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे।

0: लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर. ही इज सेकंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB. यहाँ पे एक क्योंकि ये प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
1: ऐ मेरे वतन के लोगों.
0: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है?
1: बहुत प्रिय है.
0: और कोई खास वजह?
1: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिबली रहता ही था.
0: जी जी,
1: तो दिल को छूटा है ये.
0: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स, जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न्ड, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर.

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की एक खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहां तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहां सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहां पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहां पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। तो वहां पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहां जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहां अपनी ड्यूटीज को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहां पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहां पे लिखला अपने जवानों के साथ
0: जी।
1: और हमने एक अच्छा समय वहां पे व्यतीत किया,

0: और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो इस तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है। तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
1: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है
0: जी।
1: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है
0: जी।
1: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
0: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्यर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस जिले में हम लोगों को दिया गया था उस जिले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
1: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोडा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, जामतारा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं, दुमका, पाकुड़ और गोडा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब हमारी मेरी पोस्टिंग हुई है वहां 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहां पे रहा है। और इवन एक ऐसा समय था वहां पे 2013 के आसपास कि वहां पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी, एक आईपीएस ऑफिसर की, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहां पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहां पर हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे। तो इसको इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहां पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफी अच्छे ऑपरेशंस वहां पे किए हैं और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहां से खत्म हो गया।
1: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा, ये नक्सलवाद वहां पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से बातों का जो सिलसिला उसे रखकर कोई चीज सॉल्व कर सके?
0: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है। उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेशन है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इंफॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहां पर जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहां पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहां पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत,
1: ये सब एसएसबी कर रही है?
0: बिल्कुल एसएसबी कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहां के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लंबिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बींग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा, तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है?
0: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार हम लोगों का यह फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ, वहां के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीजों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं। उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नजदीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहां पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
1: जी,
0: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे हैं, आप बनाइए। जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा। ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
1: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
0: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज है। 90 का दशक है, वहां पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
1: पनिशमेंट,
0: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूं संथाल परगना में, बहुत सीधे साधे लोग हैं, जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुंचने नहीं देते थे, पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया। और यही इसी से नक्सलवाद वहां पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज के उसमें बैरियर लगा दिया, आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद की तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
1: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूंगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, या आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
0: हाँ, मैं जरूर बता दूं, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए। नाम लेना चाहूंगा मैं उनका, हमारे आईजी सर थे श्री संजय कुमार, हमारे डीआईजी सर श्री सुमित जोशी, हमारे कमांडेंट सर परीक्षित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे, बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज बहुत अच्छी है ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री वाई एस रमेश, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफिस थे इमानुल बास्की और आरसी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई, और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पर हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से अपने ही लोगों से एक स्मॉल एक्शन टीम करके बनाई, और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब, तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट जो टैक्टिकल इंट थी, तो उसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट है उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इंफॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी उससे हमें बहुत फायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे, हमें हर जगह जाके कि हम कहां पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की, उसी का ये नतीजा

0: कि हम लोगों ने वहां बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं
1: ओके
0: और उन ऑपरेशन की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है ठीक है गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी, शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो झारखंड जैसे एरिया में, थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो, तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी।
0: बिल्कुल, आतंक का पर्याय थे ये नक्सली, ये नक्सलियों लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47 इंसास इस तरीके के वेपन्स थे जो उन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे जबरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ रहे हैं लोग और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के और वो बैरियर तोड़ दिया एसएसबी ने, वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूं आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
0: बिल्कुल, ये हमारी जो टीम थी इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी
1: जी,
0: वो टीम्स ने भी हमारे टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी इसके बाद जो है उनका भी कार्यशैली में बड़ा परिवर्तन हुआ और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है तो एक कंपटीशन है और एक पॉजिटिव कंपटीशन है और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहां पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है।
1: और मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम करना के चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी सीटीसी में जो ट्रेनिंग।
0: बिल्कुल, हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशन रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया, हमारे सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
1: जी।
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा।
1: मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो एसएसबी में, क्या खींच कर लाया आपको एसएसबी, कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं आपके अपने अंदाज में?
0: बिल्कुल, हम पूछते हैं उसके कहां से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है, हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की जरूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग को।
1: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकंड इन कमांड हैं एसएसबी के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने,
0: बिल्कुल
1: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
0: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
1: जी
0: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में और
1: पिथौरागढ़ में अरेंज नहीं होती है।
0: बिल्कुल,
1: दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते
0: हैं? बिल्कुल, हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं
1: जी,
0: तो उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है, तो जब पाता लड़की का पाता आता है मतलब पतरा जो आपको कहेंगे तो वो आता है, तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है और वो मिल जाता है तो उसके बाद शादी फिक्स हो जाती है। तो इसी प्रकार से मेरी

0: आपसे जानना चाहता हूं यहां कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पर हूं और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
1: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा, अलग अलग जगह ड्यूटीज की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
0: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियां भी हैं, तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है
1: जी।
0: मॉडर्न पढ़ाइयां हो रही हैं, गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं, तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का? या
1: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत छोटी हैं, तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है। बट मैंने जरूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं, तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल हो जाए।
0: आपकी SSB में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है।
1: बिल्कुल,
0: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के गए थे, स्मार्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स।
1: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है। और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज के लिए। वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं, उनके सोचना समझना उनका तरीका बहुत अलग होता है।
0: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा हूँ, पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष ओली। अगर अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहां पे शुभारंभ कर रहा हूं। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहां भेज सकते हैं। कुछ लोगों को नौजवानी हमारे जो नंबर है वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब है दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहां पढ़ना चाहूं, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूं, तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहां पर पोस्टेड हूं, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस, ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहां पे, और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहां पे कर रहा हूँ।
0: मैंने मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर ब्रांच से आपकी रिक्रूटमेंट होती है, तो देहरादून से अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होकर हम लिखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूं, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज ऑन एआईआर ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहां पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और है, सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं सीटीसी एसएसबी श्रीनगर से हूं, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं और सुन के आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूं कि आपके परिचित होंगे शायद।
1: थैंक यू।
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं। महेश सिंह जी कहां से लिख रहे हैं ये मुझे बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन लिख रहे हैं, आप पहचान गए होंगे
1: जी।
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद, विजय कुमार जी हैं वहां से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आ

0: वर ट्रेनिंग सेंटर, यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस. आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें. क्यों,
1: धन्यवाद है यश का.
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहा है
1: जी.
0: अब देखिए, मैंने आपसे कहा था न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे. चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूं ललित सर का. ठीक है ना सर
1: जी.
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है. दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी. जय हिंद बाबूलाल.
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं. एक और इंटरनेशनल मैसेज यहां पे आया है एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है. एंड आगे बढ़ते हैं. मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन विमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे.
1: बिल्कुल.
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं.
1: बिल्कुल.
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहां पे देते हैं. तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का. और दोनों ही, मैंने जो देखा है कि दोनों ही, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है, पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं. महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सीलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं. कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है. अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है, बट एक बार वो ट्रेनिंग में डालते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को. और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे, कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं.
0: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूं. क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू एसएसबी के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है.
0: सुझाव अच्छा,
1: बहुत अच्छा सुझाव है. और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा, और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए.
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं. शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फर्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है, जो पुलिस की टैक्टिस है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है, उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है. और हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमको एएनओ नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उन्हें जीएनके हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग जोड़ देते हैं, जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं.
0: ऑलराइट, टीपीटी सेल एफएचक्यू से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा है.
1: जी मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे.
0: ओके
1: जी.
0: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही एसएसबी में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं. नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है.
1: बिल्कुल.
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी,
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है. रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं धर्म भाटिया रोहतक से. मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे कि अब आगे के जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में. मैं ये नहीं कह रहा कि एसएसबी सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल. मेरी लिमिटेड जानकारी है, उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट, इस तरीके से भारत सरकार जो है इंप्लीमेंट करने जा रही है, और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं जो

0: नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के साथ। और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके, उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पर आने जाने वाले मूवमेंट पे हम नजर रख पाए।
1: तो यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, नहीं कि कम्प्लीटली। लोगों को लगता है कि यार आपने कम्प्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, एआई का जमाना आ गया, आप लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं एसएसबी में?
0: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट ये है कि एआई के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
1: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नजर तो जरूर रखते होंगे।
0: बिल्कुल नजर रखते होंगे और उन पे हम भी नजर रखते हैं, नजर दोनों ही तरफ से रखी जा रही है। और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नजर रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी हुई है।
1: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
0: हम ये तैयार हैं, बिल्कुल
1: चौकन्ने हैं।
0: बिल्कुल
1: सीटीसी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धुन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट मन्ना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है,
0: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
1: महिपाल सिंह है, ट्रेनिंग आप ही के जहां आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं, बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ अच्छा लगेगा।
0: धन्यवाद।
1: ऑल राइट, 29th एसआईडी से एक और मैसेज है, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम जरूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और कह रही हैं, हम सबकी तरफ से हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं, और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
0: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते जो ये वाक्य, इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें, सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय
1: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूं, कमांडो प्रवीण उनमें से एक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहां से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है, महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश। लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूं।
1: अच्छा।
0: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था, और आज भी हम जो है आज यहां आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहां जा रहा हूं जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूं।
1: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुनाया कुछ? ट्राई कर सकते हैं।
0: नहीं बस यही यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है।
1: का अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर
0: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
1: राइट देन, संदेश टू सूरजस में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ। आप हैं तो हम हैं, 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, अभी हमारे साथ रहे।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रम। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी हिसार है। आज बृहस्पतिवार है, शाम के 5 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति थारी मारी पसंद। वाचन स्वर रहेगा आजाद सिंह का।

0: थारी मारी पसंद कार्यक्रम सुननी है सारे बान भाइया ने आजाद भाई की। राम राम। वीरवार के दिन हम आपके लिए गीत संगीत किस्से कहानी गीत रागनी लेके आ कर रहे भाई। दिन में काम धंधा करके लोग बाग गाँव है और रेडियो एक ऐसा माध्यम बहुत पुराने टाइम तरह है, और जब गीत संगीत आ जाएगा तो थकावट आदमी की दूर हो जाए। तो हमारा भी एक प्रयास है कि हम आपके लिए हरियाणवी फिल्मा के गीत, पुराने गीत, नए गीत लेके आवे। आज थारी मारी पसंद में पत्रोत्तर गीत रागनी कार्यक्रम, प्रस्तुति आजाद सिंह, प्रस्तुतकर्ता श्री पवन कुमार। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सके हैं।
1: तो भाइयों सजनों

परी है।

सुखी मत ना समझे, किसी का सुखी मत ना समझे, या पूरी नेम परने की अपने कहे हुए बचनाते, या हर की जिंदगी फेरने की। और खेत मरू का समझ लिया, तू कर ली नीत चरण की।

अच्छी भुंडी ये कहे बीजी के मर जाएगी रो रो के।

सुनिए इसके पतियों का नाम सुनिए ये बड़े बड़े योद्धा देरी जाओ बुरी बात का फैल चुगरते एकदम पर्ची फेरी जाओ मूर्ख मानसी सत पुरुषों का

बाईयान सुनी राजनी बाली शर्मा और साथियों की आवाज में अगली चिट्ठी आई है गांव कुचराना खुरुद से भाई सुरेश रमेश कुलदीप। ये न्यू भी कहना चाहे कि एक रागनी सुनवा दे और किस्सा है पद्मावत का। पद्मावत के किस्से की रागनी सुननी चाहिए। गांव अलीपुरा थे जगबीर दयाराम सतबीर और रमेश, बूढ़ा खेड़ा जीन थे रामनिवास निर्मला परवीन और कमलेश। तो आपने सुनवाऊंगी रागनी मास्टर सतबीर भैंसवाड़िया और साथियों की आवाज में बात उस मौके की। किस्सा पद्मावत में थे जब वो पद्मावत की सहेलियां पद्मावत को जुलावे हैं। जोटा फिर गया पद्मावत कहन लागी आए तब न जुलाना भी नहीं आता। रखे बीरा की पिंग गीतां गल सजा कर कोई गीत ना कोई मल्हार ना थम गुंगी होके। इतनी बात सुन के पद्मावत की सहेलियां कहन लागी बेवे गीता बिना तो लुखा खाण नहीं देंगी और वो परदेशी बुलाना हमारे बस की बात को ना। उस मौके पे पद्मावत की सहेलियां मल्हार गाती हैं कैसे बला।

गांव बूढ़ा खेड़ा ते आप हैं राम निवास, निर्मला, प्रवीण, कमलेश, राजली ते नवीन, प्रवीण, कमल कुमार, भाई पाले राम दैया और साथियों की आवाज में राग में सुनना चाह रहे हैं। राजली के नवीन, प्रवीण, कमल कुमार ये भी लिखें कि आपने जो सांग सुनवाया रूप कला जादू खोरी हमने बहुत पसंद आया। भाई ये सांगे पसंद आने का है। हरियाणा के मशहूर सांगी रामकिशन व्यास नारायण द्वाले की रचना रूप कला जादू खोरी। देखिए उस टाइम के लोग धर्म कर्म पर खड़े लोगों की कथा और कहानी हम सांग की जुबानी आपने सुनवा करें। हमारा ये प्रयास आपने अच्छा लग गया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी आप प्रतिक्रियाएं लिखें उससे हमारा हौसला बढ़ रहता है कि हम आपके लिए नए नए कार्यक्रम लेके आवें। तो बात पाले राम दैया और साथियों की आवाज की रागिनी की है तो किस्सा राजा भोज में थी। बात उस टाइम की, राजा भोज की बड़ी रानी रात को ठाकुर द्वारे में जाया करती, लेकिन राजा भोज की छोटी रानी ने बात

राजा भोज ने बता दी और बात बढ़ा चढ़ा के कह दी कि आपकी बड़ी रानी का न्यू भी नहीं बेड़ावा रात ने कित रहे। एक दिन राजा भोज रात ने फाटक के ऊपर पेरे पे खड़ा हो गया। रानी भानुमती जब पैर के तड़के ठाकुर द्वारे पे उल्टी आई और फाटक खोलने के लिए जब आवाज लगाती है तो उस मौके पे रानी भानुमती और राजा भोज के बीच क्या सवाल जवाब होते हैं, उस मौके की रागनी बाले राम दैया और साथियों की आवाज में।

भाई आन सुनी रागनी पाले राम दैया और साथियों की आवाज में कार्यक्रम की अगली पेशकश सुननी चाहिए है। बेबी निशा सुनंदा देवी गोस्वामी कुशालपुर थे। आपे नेला से जगतार जग्गा संजय पावड़ा से ईश्वर पवन युद्धवीर जाखोद खेड़ा से शंभुदयाल खट्टक निर्मला देवी अमरजीत सुंदरलाल खट्टक योगेश कुमार दीपक कुमार और ललिता कुमारी। आप सुनना चाहे हैं सेठ ताराचंद के किसी की राजनी। भाई शंभू ध्यान रखें कि आपके कार्यक्रम हमने बहुत पसंद आवे हैं। किसे की बात हर रागनी के साथ, किसे का जब आप मजबून बतावे हैं तो हमारे रागनी का मुखड़ा और किस्सा समझ में आ जाए। आकाशवाणी सार का यो प्रयास बहुत सराहनीय है। देखिए आपका मार्गदर्शन, आपका सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे दिग्दर्शन का काम कर रहे हैं। हम चिट्ठियां की बाट देखें ताकि भाइयों के सुझाव और प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम उनके लिए मनोरंजन के नए नए कार्यक्रम लेके आवे। आपने सुनवाओगे किस्सा सेठ ताराचंद की रागनी। मौका उस टेम का जब वो चंद्रगुप्त उस धर्म मालकी ने टापू में छोड़ के चाल पड़िया। चंद्रगुप्त पे चालिया नहीं गया और मन मन में सोचन लग गया, देख या बेदड़ के सोन लाग रही है कि मेरा पति मेरे पास है। सवेरे जब यह उठेगी, जब उसने न्यू बेरा पाटेगा कि वो छोड़ के चला गया तो उन मन में के सोचेगी। इतनी बात पर वो चंद्रगुप्त ऊपर की ओर देख के भगवान के श्याम याद जोड़ के क्या कहता है।

0: भाइया ने सुनी रागनी सेठ ताराचंद के किसे माते कार्यक्रम की अगली पेशकश फूल सिंह नौटंकी के किसे माते पसंद करी है पटेल नगर मलोट पंजाब ताप है रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप राजोरिया बेबी और राजू दादरी गेट भिवानी थे कृष्ण मेरा कोमल मेरा कपिल मेरा कुणाल मेरा भाई कृष्ण मेरा लिखे कि आपके सारे कार्यक्रम हमने बहुत अच्छे लगे समसामयिक मुद्दों पे जो आप चिंतन परिचर्चा सुनाओ हमने बहुत पसंद आवा है ये परिचर्चा समाज के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं आकाशवाणी का मुख्य उद्देश्य भाइयों बहुजन हिताय बहुजन सुखाय शिक्षा सूचना और मनोरंजन के कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आ रहे हैं आपने चिट्ठी लिखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुनवाओगे रागनी बाग दौड़ भरी जिंदगी और पैसे दिल्ले के चक्कर में हम सब अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं हमारे घर की आन बान शान है गऊ लेकिन कई बार हम उनकी अनदेखी करते हैं जिसके कारण गऊ लाचार दिखाई दे है अपनी अनदेखी के कारण उसकी आंखों में आंसू आ जाए गऊ की पीड़ा को किस प्रकार लयबद्ध किया है उस मोटके की वानगी मोहन शर्मा डाटा वाले और साथियों की आवाज में
1: येरा

ਕਿਰਸਨ ਕਾਲਾ ਕਰੇ ਗਿਆ ਰੱਖੇ ਹਰ ਨੰਦੀ ਕਾ ਭਾਤ ਭਰਿਆ।

उस तह ज्यादा मन ने दूध पिलाया, उम्र बटेरी जोड़ा कटा नहीं रहमत ने आया। और दूध पी लिया घी बेचा घना मोटा।

खाते खुश होता मन मेरा, गाम में गर्मी ठंड में सर्दी।

ये सुना भाइयों, आज आपने कार्यक्रम थारी मारी पसंद के अंतर्गत पत्रोत्तर गीत कार्यक्रम। आप मार्गदर्शक ठोस ठीक प्रतिक्रिया इस पते पर जरूर लिखा करें। कार्यक्रम थारी मारी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी एसआर पेन 125001। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया हमें नए नए कार्यक्रम लेके आने के लिए प्रेरित करेंगे। कागज पेन उठावें, चिट्ठी लिखें, ठोस सुझाव प्रतिक्रियाओं का इंतजार करते हुए। इसी के साथ ही आज का थारी मारी पसंद कार्यक्रम समाप्त करने से पहला न्यू बता दें, गर्मी से बच के रहें, घर से बाहर जब भी लकड़े सिर पे परिणाम गोछा साफा जरूर रखें, कोरे पेंडे का पानी पीवे, सेहत स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। चालू ग्रा ग्रा चल का टीम हो रहे अपने भाई आजाद दुवन ने दी अनुमति, सारे बन भैया ने राम राम।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सिने जगत की प्रतिभाओं को आकाशवाणी हिसार का सलाम। सुनिए कार्यक्रम एक कलाकार प्रत्येक सोमवार शाम 5 बजे।
4: चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना।
3: आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम सुनिए कहीं भी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भी बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
3: आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। सुनिए प्रत्येक रविवार और वीरवार रात्रि 8 बजे। अपनी फरमाइशें भेजिए 09729253272।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी पसंद कार्यक्रम एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी हिसार है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल

मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर

के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र से, जिनका अनुप्रसारण किया गया। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी हिसार है। समय है कार्यक्रम रूपरेखा का, तो जानिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की समय सूचना। प्रभु वंदना पर आधारित कार्यक्रम भक्ति संगीत आप सुन पाएंगे शाम 6:20 पर। युवा उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम, NCERT द्वारा रहेगा ये कार्यक्रम। समय रहेगा शाम 6:30। शाम 6:10 पर प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

शाम 7 बजे श्रोताओं आप सुन पाएंगे फोन इन कार्यक्रम। कृषि संबंधी जानकारियों से भरपूर रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी। आज का विषय रहेगा गर्मियों में फलदार बागों की देखभाल। आमंत्रित विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर बलजीत भ्याण। शाम 7:30 पर कार्यक्रम रहेगा महारे गांव।

रात्रि 8 बजे श्रोताओं आप सुनिएगा व्हाट्सअप के बहाने फिल्मी तरानी। रात्रि 8:45 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार होंगे, तदुपरांत राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 9:15 से रात्रि 10 बजे तक सुनिएगा विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रमों को।

रात्रि 10 बजे आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति रहेगी ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। रात्रि 11 बजे राष्ट्रीय हिंदी समाचार, तदुपरांत 11:05 पर राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: ये आकाशवाणी हिसार है। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी हिसार है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: इसे प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों के आदान प्रदान पर बल दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आकाशवाणी और प्रसार भारती के अधिकारियों से समयानुसार परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाने का आह्वान किया। कुरुक्षेत्र में बरसात से पहले अभी तक 80% नालों की सफाई का काम मुकम्मल हुआ। फरीदाबाद पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद एक हिस्ट्री शीटर को एक पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया और आज हरियाणा के उत्तरी जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश दर्ज की गई। रात को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में भी बारिश होने की संभावना है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच योग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति होंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने विकास और निर्यात के नए अवसर पैदा करने के लिए कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इन समझौतों से लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। उन्होंने कहा कि कृषि और स्टार्टअप से लेकर विज्ञान और नवाचार तक नारी शक्ति सभी क्षेत्रों में योगदान दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों को महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। इस वर्ष की बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास था। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और उपराज्यपालों ने भाग लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया है। विजयपुर में आकाशवाणी परिसर से राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करने के अवसर पर बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी और दूरदर्शन में समयानुसार परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाने का आह्वान किया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने आज कुरुक्षेत्र में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर बरसात के मौसम के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा शुरू होने से पहले सभी नालों और ड्रेनों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया जाए ताकि लोगों को जल भराव जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित विभागों से साफ सफाई व्यवस्था और चल रहे कार्यों की जानकारी भी ली। श्री सुभाष सुधा ने मीडिया को बताया कि 80% नालों की सफाई अभी तक हो चुकी है।
2: अभी मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट की, संसदीय बोर्ड की, कलम क्या पब्लिक हेल्थ की, म्यूनिसिपल काउंसिल की और इरिगेशन डिपार्टमेंट की सभी डिपार्टमेंट की बैठक को लेकर मीटिंग की थी। मीटिंग के अंदर जहां जहां भी हमें प्रॉब्लम आती है जैसे विधानसभा में, मैंने स्टेप टू स्टेप हर बार उसके लिए बात की है। 80% जो हमारा फ्लड के अंदर ड्रेन आती है उसकी सफाई हो चुकी है। 20% और भी आने वाले 10 दिन तक सफाई कंट्रोल हुई, 100% सफाई हुई, ताकि हमारी अपनी तैयारी होनी चाहिए लोगों को जान आने की।
0: उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार बाढ़ और जल निकासी प्रबंधन की निगरानी के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर सफाई कार्य से जुड़े सभी विभाग अपनी गतिविधियों और प्रगति की जानकारी अपलोड कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष जन स्वास्थ्य विभाग के लिए आधुनिक मशीनरी की मांग रखी गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। जल्द ही कुरुक्षेत्र के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से सुपर सकर मशीन तथा 40 से 50 लाख रुपए की लागत वाली सीवर जैकिंग मशीन खरीदी जाएगी। फरीदाबाद पुलिस की सेक्टर 85 और केंद्रीय अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने आज अल सुबह मुठभेड़ के बाद एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान बिहार में सीतामढ़ी सोनू उर्फ भिखारी शाह के तौर पर हुई है, जो वर्तमान में दिल्ली के संगम विहार में रह रहा है। सहायक पुलिस आयुक्त वरुण कुमार दहिया ने मीडिया को बताया कि अपराध शाखा ने एक सूचना के आधार पर IMT मच्छगर सड़क पर नाकेबंदी कर उसे काबू किया। गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने पुलिस पर 4 राउंड गोलीबारी की। आरोपी की एक गोली उपनिरीक्षक दीपक लोहान के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली उसके पैर में लगी और उसे काबू कर लिया गया।
3: एक कुख्यात बदमाश जो एक हिस्ट्री शीटर है, जिसका नाम सोनू है, एक टिप अप हुआ जो फरीदाबाद के अंदर बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है। इसको पकड़ने में मुठभेड़ के दौरान सफलता प्राप्त हुई। इसके ऊपर नोएडा के अंदर हत्या के प्रयास, अगेंस्ट एक्ट, आर्म्स एक्ट, NDPS और इससे संबंधित अन्य ऐसे लगभग 28 मुकदमे पहले से दर्ज है, जिस फरीदाबाद के अंदर भी 4 मुकदमों में वंचित था।
0: श्री दहिया ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 32 बोर का पिस्तौल, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, नकदी तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आज हरियाणा के उत्तरी जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश दर्ज की गई है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में भी आज धूल भरी हवाएं चल रही हैं। रात को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण बारिश होने की संभावना है।
4: आज रात्रि को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण हरियाणा के दूसरे हिस्से जो पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा में भी बारिश की संभावना है। कल 12 जून और 13 जून को भी हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्र में हवाओं में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। 14 तारीख को कुछ ज्यादा बारिश की संभावना नहीं, परंतु 15 जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना बन रही है। उससे मौसम फिर से बदलाव आने वाला है। जो भी ये बारिश होगी उसका सभी फसलों में फायदा मंद रहेगा।
0: डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने कहा कि इस बारिश से नमी संचित हो सकती है, जो धान की रोपाई के लिए फायदेमंद रहेगी। मॉनसून को लेकर उन्होंने कहा कि मॉनसून अभी कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पहुंचा है। अभी मॉनसून की गति ठीक है, अगर ऐसे ही रहता है तो 20 जून के आसपास मॉनसून पूर्व वर्षा हो सकती है। हरियाणा में मॉनसून जून के अंतिम दिनों में यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पहुंच सकता है। हरियाणा के विद्यालयों की कक्षा 8वीं के इतिहास पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं व बाबा बंदा सिंह बहादुर से जुड़े इतिहास को शामिल किया गया है।

0: अब स्कूली बच्चे सिख गुरुओं के साथ साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के त्याग बलिदान और आदर्शों से रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में मनाए गए गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम के अवसर पर घोषणा की थी कि आने वाली पीढ़ियों को सिख इतिहास, गुरुओं के आदर्शों और उनके महान बलिदानों से परिचित कराने के लिए इन्हें शिक्षा का हिस्सा बनाया जाएगा। पंचकुला के नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने आज संपत्ति कर संग्रहण में तेजी लाने, बकायेदारों की पहचान कर उन्हें नियमानुसार नोटिस जारी करने तथा बकाया राशि की प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश संपत्ति कर वसूली की प्रगति की समीक्षा हेतु अधिकारियों की ली गई बैठक में दिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों के आदान प्रदान पर बल दिया। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आकाशवाणी के अधिकारियों से समय अनुसार परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाने का आह्वान किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
1: FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिनका अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी हिसार है। आइए सुनते हैं प्रभु वंदना पर आधारित भक्ति संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रभु वंदना पर आधारित भक्ति संगीत। ये आकाशवाणी हिसार है। आइए सुनते हैं युवा उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में।

0: उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं
1: जी।
0: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की
1: जी।
0: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
1: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती है। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
0: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं
1: जी।
0: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं
1: जी।
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
1: श्रोताओ, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं
1: जी।
0: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है
1: जी।
0: या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार
1: जी।
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
1: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं
1: जी।
0: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
1: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है
0: जी। विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था
1: जी।
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
1: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है
0: जी। श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
0: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदों के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन रामकृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को रामकृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र रामकृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ के स्वभाव है कितने मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमृत स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिली जुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
0: जी,
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
0: जी हाँ,
1: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
0: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
1: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
0: जी,
1: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला न होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
0: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
1: दरअसल 6ठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
0: जी,
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
0: जी हाँ,
1: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
0: जी बिल्कुल।
1: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
3: घर के पास लगा था मेला,

सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत उमंग कार्यक्रम। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी हिसार है। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। आज रहेगा फोन इन कार्यक्रम और विषय रहेगा गर्मियों में फलदार बागों की देखभाल। आमंत्रित विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर बलजीत भयान। तो सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति।

0: ਜੀ ਬਹਿਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਔਰੇ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਕਿਸਾਨ ਵਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿਣ ਭਾਈ ਨੇ
1: ਰਾਮ ਰਾਮ ਔਰ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਕਿਸਾਨ ਵਾਣੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਹੈ ਕੇਸੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
0: ਔਰ ਆਜ ਦੇਖੋ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਫੋਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਆਜ ਕਾ ਹਮਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਗਰਮੀਓ ਮੇ ਫਲਦਾਰ ਬਾਗੋ ਕੀ ਦੇਖਭਾਲ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਬਿਆਨ ਸੇਵਾ ਨਿਵਿਰਤ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਵਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ
1: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕਾ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
2: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਭੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਕਾ ਨਮਸਕਾਰ
1: ਭਾਈਓ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਤਾ ਦੇ 0162-297-827 0162-297-827
0: तो इस फोन नंबर पर हैं आप जो है किसान भाई हैं वो फोन कर सकते हैं इस फोन नंबर पर आप जो है ना वो कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है वो आप डॉक्टर साहब से उसका हल जो है वो आप ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब जो गर्मी का मौसम है जो फलदार पौधे हैं तो उनकी किस तरह देखभाल करना
2: है? राकेश भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है इसमें, क्योंकि अब जितना गर्म मौसम है तापमान हम देख रहे हैं 45 डिग्री 46 डिग्री 47 डिग्री तक जाने लग रहा है
0: जी।
2: और लू चल रही है हीट वेव जिसको कहते हैं और ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसके बाद ये चीजें और ज्यादा बढ़ रही हम देख रहे हैं तापमान भी एकदम ये बढ़ जाता है और लू बहुत ज़्यादा चलती है। तो ऐसी स्थिति में जो बाग हैं जो फलदार पौधे हैं उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लू चलने से और ज़्यादा तापमान होने से पौधे में नुकसान होने का बहुत खतरा रहता है और ख़ासकर जो बाग नए लगाए उन बागों में बहुत ज़्यादा होता है। जो किसानों ने पौधारोपण किया था पिछली फरवरी में या मार्च में जनवरी के बाद, तो वो छोटे पौधे हैं उनकी देखभाल बहुत अति आवश्यक है। तो देखभाल में हमें मोटे तौर पर दो तीन चीज़ें हमने करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम कोशिश करें पौधों को डायरेक्ट लू से बचाएं
0: जी
2: जो पश्चिम साइड से लू चलती हैं अगर उस तरफ हम थोड़ी बहुत कोई रुकावट कर दें छोटे पौधों में तो उससे बहुत बचाव हो जाता है और दोपहर के समय और दोपहर के बाद उन पर छाया आ जाए तो जो छोटे पौधे हैं वो बच जाते हैं। अदरवाइज हम देखते हैं कि डायरेक्ट लू लगने से जो छोटे पौधे होते हैं वो जल जाते हैं और फिर किसान को दोबारा पौधारोपण करना पड़ता है।
0: तो उसमें फिर के कुछ करना चाहिए?
2: उसमें मैं बताता हूँ ना, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आप कोई भी उस तरफ से रुकावट उसमें कोई कपड़ा या जैसे कोई घास फूस की चीज ऐसी कर दें कोई लकड़ी लगा के कि हाँ पराल है जिससे लू सीधी पौधे को ना लगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि हम हल्की सिंचाई ज़रूर करते रहें बागों में। अगर किसी पर ड्रिप इरीगेशन है तो ड्रिप इरीगेशन डेली चलाए और मान लो ड्रिप इरीगेशन नहीं है तो वैसे भी हल्का पानी दूसरे तीसरे दिन

0: ज़रूर देता रहे। और पानी लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दिन में पानी ना लगाएं।
1: अच्छा।
0: अगर दिन में पानी लगाते हैं तो उससे भी पौधों का जलने का की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि पानी

0: देर तक पानी ना लगाएं, उसके बाद आप पानी लगा सकते हैं, हल्का पानी लगाएं, पानी खड़ा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें।
1: क्योंकि पानी खड़ा होगा
0: हाँ
1: तो गर्म होगा,
0: यस यस
1: जिससे
0: जी। और तीसरा एक काम हम कर सकते हैं कि पौधों के आर बार मल्चिंग करें। मल्चिंग कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्लास्टिक की करें, अगर घास फूस से भी आप पौधों को ढक देंगे तो उससे भी दो तीन फायदे होंगे। एक तो ये कि उसके आसपास ज़मीन का तापमान इतना ज़्यादा नहीं होगा, तापमान कम रहेगा तो पौधे के जलने की संभावना कम हो जाती है। नंबर दो, अगर आपने मल्चिंग कर रखी है घास फूस की तो पौधे के आर बार मॉइस्चर बनी रहती है, और मॉइस्चर बनी रहती है तो पौधा जो है हीट वेव से या हाई टेम्परेचर से मरता नहीं है। और तीसरा फायदा ये है कि मान लो आपने पौधे के चारों तरफ मल्चिंग कर रखी है, घास फूस डाल रखा है, तो पानी का जो वाष्पीकरण है वो कम होता है, और पानी का वाष्पीकरण कम होता है तो ज़मीन में नमी बनी रहती है और पौधे को गर्मी से या लू से नुकसान नहीं होता।
1: तो डॉक्टर साहब, कई पौधे हैं जो थोड़ी बहुत गर्मी सहन करने हैं, तो उनका कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो बिल्कुल गर्मी
0: यस हाँ, वो तो देखो पौधे तो हर तरह के हैं, इसलिए हम पौधों की सिफारिश भी इलाके के अनुसार ही करते हैं। उदाहरण के तौर पर अपने इलाके में अपन जो बाग लगाते हैं, इसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी जिले में, इन जिलों में अपन बाग अमरूद और नींबू वर्गीय, बेर, आंवला, इस तरह के पौधे लगाते हैं। ये पौधे कुदरती तौर पे ही गर्मी के सहनशील हैं ज़्यादा। और मान लो जैसे आम लगा रखे अपने इलाके में या लीची लगा रखी है, तो वो पौधे इतने गर्मी के सहनशील नहीं हैं, वो उनके ऊपर ज़्यादा नुकसान होता है। और ये जो हमारे इलाके के पौधे होते हैं ये थोड़े से गर्मी को सहन कर लेते हैं, तो इसलिए हम जो पौधों की सिफारिश करते हैं वो भी उसके अनुसार ही करते हैं, इलाके के हिसाब से, और उसी हिसाब से पौधों का देखभाल और वो करनी चाहिए।
1: जी, तो जो आपने बताया कि जो भाई बागवानी करना चाह रहे हैं तो वो पहले डॉक्टर से संपर्क करें, यानी जो बागवान अधिकारी है उससे वो संपर्क करें, उसी के बाद ही वो अपना
0: यस। अब जो समय है, जैसे आप बात कर रहे हैं, एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी है कि भी जो बाग लग चुके उनको हम गर्मी से कैसे बचाएं, लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस टाइम पर हमने जो आगे बाग लगाने उनकी तैयारी करने का भी बेस्ट टाइम है, क्योंकि आगे जब बारिश आएगी जुलाई में, तो एक बारिश जब आ लेती तो हम कहते हैं उसके बाद आप पौधारोपण कर दें, तो उस पौधारोपण में की तैयारी हमने अभी करनी है
1: जी।
0: उस तैयारी में कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि किसानों को ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि भाई उन्होंने बागवानी विभाग के अधिकारियों से मिलना चाहिए और उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए, ये सही बात है। उन्होंने बागवानी विभाग में जा कर के पूछना चाहिए कि मैं इतने इलाके में बाग लगाना चाहता हूं, तो वो उनको अच्छी तरह से गाइड करेंगे उसके किसान की परिस्थिति और खेत की हालात के अनुसार, और उसके अनुसार उन्होंने करना चाहिए। उसके साथ साथ दो चार जो मोटी मोटी चीज़ें जो हर किसान को ध्यान रखनी चाहिए उस पर आप ज़रूर बात कर लें। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिसने बाग लगाना है उसने सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए, क्योंकि बाग एक ऐसी चीज़ आपने एक बार लगा दिया तो लगभग 20 साल तक चलता है।
1: तो उस नमूना किस तरह लें?
0: हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले तो हम ज़मीन का जो है सोयल सैंपल लें, और इसका सोयल सैंपल लेने का, मिट्टी का नमूना जो बाग के लेने का तरीका आम फसलों से अलग है थोड़ा सा
1: जी।
0: ये ध्यान रखिए, इसके लिए हम लगभग 6 फुट गहराई तक का सैंपल लेते हैं जी।
1: हेलो हेलो हेलो,
2: हाँ जी, डॉक्टर साहब की आवाज आ रही है आपको? कुमारी जी, हाँ जी, ये थोड़ा ठीक था।
0: चलो, उनकी जो किसानों की बात है हमने ध्यान कर ली
1: जी।
0: तो मैं इसको बात को थोड़ा जारी रखता हूँ। उसमें आप बात कर रहे थे कि भाई सबसे पहला कदम यही है कि हम जा करके अपने खेत से मिट्टी के नमूने लें, और मिट्टी का नमूना लेने का तरीका ये है कि आपने लगभग 6 फुट की गहराई तक इसका मिट्टी का नमूना लेना है। उस 6 फुट में क्या करना है, आपने ऊपर के 0 से 15 इंच तक का एक और 15 से

0: 33 इंच तक का दूसरा
1: जी, दो नमूने तय हो गए,
0: पहले एक फुट में दो नमूने
1: जी।
0: हाँ जी, किसी
2: अफवाह। नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार जी,
2: आवाज नहीं आ रही सर आपकी।
1: मेरी?
2: हाँ सर।
1: तो आप देखना। हेलो।
2: हाँ जी, हाँ।
1: आ गई।
2: हेलो।
0: हाँ जी बोलिए, अब आवाज आ रही है आपको?
2: डॉक्टर साहब नमस्कार, आवाज नहीं आ रही सर आपकी।
0: हाँ जी नमस्कार, अब आ रही है क्या आवाज आपको? मुझे आ रही है आपकी आवाज अच्छी तरह से।
2: हेलो।
0: हाँ जी कट गया फोन, आ जाएगा। तो उसमें सैंपल लेने का जो अपन तरीका बता रहे थे उसका यही तरीका है कि ऊपर के एक फुट में दो नमूने होंगे
1: जी,
0: और नीचे से अगले जो है पांच फुट में एक एक फुट के नमूने होंगे,
1: यानी टोटल
0: छह फुट में सात
1: नमूने होंगे।
0: यस।
1: अच्छा।
0: और वो सारे नमूने आपने अलग अलग थैली में डालने, उस पर लिखना है कि ये नमूना जीरो से
1: हेलो
0: सेंटीमीटर।
1: हेलो,
2: आवाज बहुत ही कम आ रही है सर।
0: अब भी नहीं आ रही क्या?
2: हेलो।
1: हाँ जी हाँ जी, आप अपना प्रश्न पूछें।
2: मैं गांव चौधरी वास से राजू अग्रवाल।
1: हाँ जी राजू जी,
2: और ये बताते हैं जी सब्जी और जो बागवानी है इसमें जो फुहारे की खेती से बोले पत्तों पे ज्यादा नुकसान होता है जबकि ड्रिप सिस्टम में नहीं होता।
0: ये
2: दिल्ली से सुना
0: था। हाँ राजू जी, मैं आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपके पास बाग है तो बाग में तो हम यही कहेंगे कि आप ड्रिप इरिगेशन लगाइए, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन लगाने से पानी पौधे की जड़ में पहुंचता है। और आप सब्जी है आप जो है तो आप फुहारा लगाएं तो ये ध्यान करें कि फुहारा भी दोपहर के समय न चलाएं, फुहारा भी सुबह या शाम ही चलाएं तभी, क्योंकि अगर दिन के समय फुहारा चलाएंगे और उसके ऊपर पौधों के ऊपर पानी के ड्रॉप हो गए और वो ड्रॉप गर्म हो गए तो वो जल जाते हैं। एक दो शिकायतें हमारे पास ऐसी भी आई, कुछ लोगों ने इस बार मूंग में चला के ट्राई कर लिया फुहारा और मूंग में वो चलाने से क्या हो गया, उनका सारा मूंग खराब हो गया क्योंकि उस पर पत्तों पर पानी लग गया और फिर ज़्यादा तापमान हुआ तो पानी गर्म हो गया तो उससे पत्ते जल गए। तो फुहारा के लिए भी ये हम आपको यही हिदायत देंगे, सिफारिश करेंगे कि फुहारा भी सुबह शाम चलाइए, बल्कि शाम को चलाइए, सुबह भी ना चलाएं क्योंकि वो थोड़ा बहुत अगर पत्ते पानी रहेगा दिन में वो गर्म होकर के नुकसान कर सकता है। और ड्रिप भी चलाएं तो आप ड्रिप भी शाम और सुबह ही चलाएं, दोपहर को ड्रिप ना चलाएं, और वैसे पानी देना है तो भी सुबह शाम ही दें बाग और सब्जियों में, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
1: और डॉक्टर साहब जो हम बात कर रहे थे कि सात नमूने जो आपने बताए उनका अलग अलग रखें
0: जी, उसके ऊपर हर थैली पर आपने लिखना है कि ये सैंपल नंबर एक 0 से 15 सेंटीमीटर का है
1: जी,
0: सैंपल नंबर दो 15 से 30 सेंटीमीटर का है, सैंपल नंबर तीन 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, इस तरह से वो उनके ऊपर आपने हर थैली के अंदर लिखना है ताकि जब सॉइल टेस्ट हो तो ये पता लग जाए कि नीचे तक जमीन की स्थिति क्या है, कहीं कंकर तो नहीं है, कोई उसका मान लो पीएच तो ज़्यादा कम नहीं है। तो वो सॉयल सैंपल लेके और आप यूनिवर्सिटी से टेस्ट करवा करके फिर आप बागवानी विभाग में जा करके अपनी सॉयल टेस्ट दिखाएं तो वो लोग फिर आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे कि आपकी ज़मीन कौन से बागों के लिए फिट है।
1: और बगैर मिट्टी के, यानी यही कहने का मतलब है कि बगैर मिट्टी जांच कराएं बाग ना लगाऊं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाग ऐसी चीज़ नहीं है ना, आपने एक बार फसल तो मान लो हमने लगा लिया रोज 6 महीने ही उसमें नुकसान हुआ, और बाग आपने लगा लिया तो मान लो आप 3 साल के बाद तो फल देना शुरू करेगा
1: जी,
0: 4th-5th साल ज़्यादा फल आएगा, फिर मान लो उसमें कोई दिक्कत होगी तो 5 साल आपको नुकसान हो गया।
1: तो डॉक्टर साहब दो बातें हैं, एक तो मिट्टी पानी की जांच कराएं और उस तक जांच कराने के बाद में मिट्टी की जांच कराने के बाद में ही ये निश्चित करें कि हमने कौन सा बाग लगाना है।
0: यस बिल्कुल सही बात है। तो पहला कदम आपका ये हो गया कि आपने मिट्टी की जाँच करानी है, दूसरा जो बाग लगाने के लिए आपने जो कदम उठाना है वो है जब आपको बागवानी विभाग सिफारिश कर देगा आप इस तरह के पौधे लगाओ ये बाग लगाओ, फिर आपने उनके लिए गड्ढे खोदने
1: जी।
0: और अब गड्ढे खोदने का उचित समय है, मान लो किसी ने किन्नू का बाग लगाना है तो और मोटे तौर पर सिफारिश किन्नू पर हम ये कहते हैं कि 20 फुट बाई 20 फुट के ऊपर आप बाग लगाएं, तो इस टाइम के ऊपर 3 फुट चौड़े 3 फुट गहरे खड्डे खोद करके आप छोड़ दीजिए।
1: तो डॉक्टर साहब कहने का ये है कि बारिश के टाइम में जो बाग लगाए जाऊंगे उनके लिए इब्बे तो तैयारी शुरू
0: ये
1: करनी।
0: तैयारी करने का बहुत अच्छा समय है, मैं बताऊं ना, क्योंकि अब मान लो आपने खड्डे खोद के खुले छोड़ दिए, तो जो हाई टेम्परेचर है उससे मान लो आपकी जमीन में कोई इस तरह का बैक्टीरिया या कोई फंगस, कोई वायरस जो कि हानिकारक हो, और वो आपने खुला छोड़ दिया, तो 45 डिग्री टेम्परेचर पर इस तरह के हानिकारक जितनी भी कोई चीज है जमीन पे वो सारी मर जाएंगी,
1: जी
0: जो हमारे को आगे उसका बहुत फायदा होगा। और अब वो छोड़ दिया, उसके बाद अब आपके पास टाइम है, फिर आप उनको 5-7 दिन खुला छोड़ करके फिर आप उसमें जो आपकी मिट्टी निकली, उस मिट्टी में से आधी मिट्टी जो ऊपर ऊपर की, अब ये भी खड्डा खोदें उस टाइम ध्यान रखना है कि 3 फुट है ना का गहराई करते हैं, तो ऊपर की 1.5 फुट की मिट्टी एक तरफ डालें और नीचे की 1.5 फुट की मिट्टी अलग डालें, क्योंकि उसका कारण यह है कि ऊपर की 1.5 फुट मिट्टी जो होती है वो बहुत पौष्टिक होती है, सारे न्यूट्रिएंट जो है ना उसी में होते हैं।
1: ऊपर 1.5 फुट
0: हाँ,
1: वाली।
0: ऊपर 1.5 फुट वाली में, ऊपर की 1.5 फुट मिट्टी हमने अलग डाल दी, और उसी के अंदर फिर उतना ही खाद, गला सड़ा खाद
1: वो आ
0: जिसको,
1: मिला हुआ।
0: वो उसके अंदर डाल के मिला दें, अच्छी तरह मिला करके उसको खड्डे को दोबारा भर दें। और ये ध्यान रखें जब खड्डा भरें वो जमीन के लेवल से कम देसी भाषा में कहूं तो हमें 4 आंगल 5 आंगल ऊंचाई तक भरें,
1: यानी उसमें फिर पानी देवांगे तो
0: पानी
1: समतल हो
0: देगा
1: जाएगा।
0: तो वो बैठ के नीचे चला जाएगा। तो ये इस टाइम पे किसानों ने विशेष प्रिकॉशन रखनी है। अब आप खड्डे खोद लें, खड्डे खोद के उनको 5-10 दिन खुला छोड़ दें, खुला छोड़ने के बाद फिर उनको खाद मिला करके वापिस भर दें। उसके जब आप वापिस भर रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसके अंदर 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट मिला सकते हैं, क्योंकि उससे भी जमीन की ताकत बढ़ेगी।
1: यानी हर जो खंडा आपने खोदा है 1 किलो
0: सिंगल सुपर फास्फेट
1: वो आप उसमें दे दें।
0: मिला सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन
1: जी
0: मिला दें तो अच्छा है, नहीं तो आपको रेगुलर फिर ड्रिप के थ्रू खाद देना है और ना वो आगे की बातें हैं सारी। तो ये आपने इस तरह के करके छोड़ देना है, और उसके छोड़ने के बाद आप उस पौधे उस गड्ढे को के अंदर फिर आप पानी छोड़ दो एक बार, और जब आप उसको छोड़ दोगे पानी तो गड्ढा नीचे बैठ जाएगा।
1: जी
0: अब हमारे पास बहुत अच्छा समय है, पानी लगा के छोड़ दिया, तो 8-10 दिन तक मान लो पानी लगा के छोड़ दिया, तो उसका ये फायदा होगा कि मान लो आपकी खाद थोड़ी बहुत कच्ची थी या कोई चीज है, तो अंदर वो 5-10-20 दिन में दोबारा से डीकम्पोज होकर अच्छी तरह से मिल जाएगी।
1: यानी जो खाद है और जो मिट्टी हमने मिला वो
0: हाँ,
1: तैयार हो जाएगा।
0: तैयार हो जाएगी। उसमें कई बार क्या होता है, हमने ये देखा गया कि अगर तुरंत खड़ा खाद के समेत भर दिया और तुरंत पौधा लगा दिया तो उसकी थोड़ी सी गर्मी ज्यादा बन जाती है, उससे भी पौधा जल जाता है। तो पौधा मतलब बाग लगाने से पहले गड्ढा भर के पानी लगा के छोड़ दिया जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है।
1: यानी पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, देखो बाग तो आप ये समझो कि ऐसे पालना है जैसे बच्चे को पालते हो
1: जी डॉक्टर साहब।
0: आप। मैं बाग लगाने वालों से हमेशा ही कहता हूं, अगर देखभाल करने की हिम्मत है
1: तो
0: आप
1: बाग
0: जैसे,
1: लगाओ।
0: तो बाग लगाओ, नहीं तो फिर अगर कोई यू कह बाग लगा दिया और मतलब 10 दिन 15 दिन खेत में नहीं जाओ तो उसका बाग नहीं चलेगा। बाग तो बिल्कुल बच्चे जैसे संभाल मांगता है, तभी बाग चलता है, तभी फायदा देता है जब भी उसमें कोई आमदनी होती है।
1: यानी नया जो बाग लगाऊंगे तो जो उसके में अभी खंडे खोदने का सही समय है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो
0: आपने खड्डे खोद दिए, पानी लगा के छोड़ दिया, उससे अगला बात यह है कि आप अभी अपने पौधे सुनिश्चित कर लें कहाँ से लेने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या हो गया, आपने तैयारी करके छोड़ दी और आपने पौधे अभी बुक नहीं किए, तो मौके पर कई बार पौधे मिलते नहीं हैं।
1: पहले पौधे बुक करो अपने।
0: बिल्कुल
1: पहले बुक करने के बाद में ही आपने जो है ना वो खेत की वो तैयारी करनी शुरू करो।
0: हाँ, तो जब आपने बुक करने हैं तो उस टाइम कई चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जहां भी आप पौधे बुक कर रहे हो आप इस बात की तसल्ली करो कि उस जहां से उन पौधों को तैयार किया गया है उसकी जमीन में कहीं ये नेमेटोड तो नहीं है।
1: जी
0: ये आजकल बहुत बड़ी समस्या आ रही है, कई लोग प्राइवेट नर्सरियों वाले जो है पौधे आ रहे हैं तो उनमें निमेटोड आ रहे हैं, तो उससे बचाव के लिए पहले आपने उस चीज की तसल्ली करनी पड़ेगी।
1: तो आप जो नया बाग लगाना चाहते हैं तो निमिटोड के बारे में बताओ डॉक्टर साहब। यू है क्या?
0: निमेटोड एक ऐसा कीड़ा है जो आपको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, वो आपकी जमीन में जड़ के साथ ही रहता है, और जिन जमीन में मान लो निमेटोड है, मान लो आपने अमरूद लिया उदाहरण के तौर पर, तो जहां अमरूद का पौधा की पौध तैयार करी है मान लो उस जमीन में निमेटोड है,
1: जी
0: और वो वहां से वो मिट्टी और उसकी जड़ पौधे की यूं

0: आपके खेत में आ गई तो उसके साथ कुछ निमेटोड आ गए, वो निमेटोड आके फिर आपकी जमीन में और फैल जाएंगे, और फैलने से क्या होगा कि पौधे की जड़ में गांठ बन जाती है, और पौधे की जड़ में गांठ बन जाती है तो पौधा फिर नीचे से खुराक नहीं ले पाता, तो आपका पौधा खड़ा तो रहेगा लेकिन वो बढ़वार नहीं लेगा, छोटे छोटे पत्ते हो जाएंगे, आप बड़े परेशान होगा, आप उसका इलाज करते रहो, बाद में उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल है बाग में खासकर।
1: तो डॉक्टर साहब मान लो हम कहीं से नर्सरी से पौधे लेके आ रहे हैं, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये बगैर निमेटोड के हैं?
0: उसके देखो सुनिश्चित करने की तो दो तीन चीजें हैं, वैसे तो अगर हम कानूनी तौर पर तो देखें जो एक्रीडिटेड नर्सरी हैं, जो नर्सरियों को सरकार ने मान्यता दे रखी है, तो ये माना जाता है कि वो ऐसे पौधे तैयार करते हैं, लेकिन आपान बिराया है कि कई बार जो है ये कागजों में तो कानून लिख देते हैं, व्यवहार में लागू होता नहीं है, तो वो आपने मौके पर जाकर देखना चाहिए।
2: हेलो
0: जी,
2: हेलो, हाँ नमस्कार जी,
0: जी नमस्कार,
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है,
2: बंसीलाल बटुकला से जी।
0: हाँ जी बंसीलाल जी बोलो।
2: हाँ जी, क्या विषय है जी आज?
0: आज विषय है बागवानी के नए बाग लगाने बागों नए बाग लगाने और जो पौधे लगा रखे उनकी देखभाल कैसे करें, बागवानी का विषय है आज।
2: अच्छा बागवानी है अभी?
0: हाँ हाँ जी, अगर बागवानी से संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो।
2: बागवानी,
0: चलो कोई बात नहीं, आप उन सुनोगे आपके थोड़ी ज्ञान वृद्धि हो जाएगी।
2: ठीक है जी, धन्यवाद
0: जी। तो मैं तो ये कहूंगा पहले तो कोशिश करोगे आप सरकारी नर्सरियों से खरीदें, हरियाणा में बहुत सरकारी नर्सरियां हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रखे हैं सरकार ने। उदाहरण के तौर पर मैं आपके बताऊं, जैसे आपने नींबू वर्ग के ये पौधे लेने हैं तो हमारा मांगियाना फार्म है सरसा जिले में, वहां पर आपको हर तरह के वो पौधे मिलेंगे, और वहां पर बाकायदा मतलब जमीन को सॉइल को ट्रीट किया जाता है कि निमेटोड ना हो
1: जी।
0: तो इस तरह के जो सोर्स हैं वहीं से आप पौधे खरीदें। आपने अमरूद लेना है तो हमारा बुन्ना फार्म है जहाँ जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है अमरूद के लिए बागवानी विभाग का, आप वहाँ से लें। तो ये मैं तो ये कहूँगा आप प्राइवेट से लें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान कर लें, वो आप जाके मौके पे देखें कि उसने पौधे तैयार करते समय निमेटोड के लिए ट्रीटमेंट किया है कि नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बीमारी मतलब समस्या आ रही है अमरूद के बागों में सबसे ज़्यादा आ रही है
1: तो, जो अमरूद के बाग।
0: हाँ, तो किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आपने पौधे बुक कर लिए, आपका खेत तैयार है, आपने एक बारिश का इंतजार करना, ये नहीं है कि आपने जुलाई में शुरू में पौधे लगा दिए, हम ये कहते हैं कि एक बारिश होने दो अच्छी तकड़ी, क्योंकि उसका ये फायदा होता है एक बारिश होने के बाद जमीन का तापमान भी नॉर्मल हो जाता है, पहली बारिश में एक बार गर्मी बढ़ती है आपने देखा होगा,
1: यानी शुरुआत में आपने बाग नहीं लगाना बाद में लगाना।
0: यस, ये बहुत जरूरी बात है, बाग लगाने का टाइम आप ये कह सकते हैं जुलाई अगस्त और सितंबर तक भी जा सकते हैं, मतलब कोई जल्दी नहीं है आपको, तो आप पहली बारिश का इंतजार करें, क्योंकि इलाका टू इलाका वेरी करती हैं चीज़ें, कई इलाकों में पहले बारिश हो जाती है कई में थोड़ी बाद में होती है, तो किसान जल्दी कर लेते हैं,
1: यानी देखा देखी ना लगाएं,
0: देखा देखी ना लगाएं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर बारिश होगी आपके पास पौधे तैयार हैं आप पौधे ले आए, उसके बाद आपने पौधारोपण करना है, और जिन किसानों ने मान लो बाग में ड्रिप लगा रखी है तो वो भी अब बेस्ट टाइम है उनके लिए भी, क्योंकि आपने जब आप खड्डे खोद लोगे, खड्डे खोदने के बाद जो आपने लाइनें दबानी हैं ड्रिप की, अब आपका खेत खाली है तो आप उसमें आसानी से ट्रैक्टर से लाइनें खुदवा करके अपने उसके अंदर ड्रिप बिडल स्टेम डलवा के तैयार कर लें। पौधारोपण से पहले ये भी जरूरी है, अगर आपने ड्रिप लगवानी है तो आपकी ड्रिप जिस टाइम आप पौधे लगाओ वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब हमने मिट्टी की जांच की लेकिन पानी की जांच भी बहुत जरूरी है।
0: हाँ बिल्कुल, पानी की जांच तो अगर हम ड्रिप लगाते हैं तो हम यही मान के चलते हैं कि हम टैंक बनाते हैं
1: जी,
0: और उसमें कनाल वाटर ही यूज करते हैं
1: ज्यादातर,
0: हाँ नहर का पानी टैंक में हम स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद ड्रिप से उसकी इरीगेशन करते हैं। ज्यादातर प्रैक्टिस अपने खासकर सिरसा फतेहबाद हिसार भिवानी जिलों में तो यही चल रही है
1: जी डॉक्टर,
0: क्योंकि सरकार की स्कीमें हैं अच्छी, टैंक बनाने के ऊपर भी अनुदान है, ड्रिप इरीगेशन लगाने पर भी अनुदान है, और पौधारोपण जो आप करोगे पौधों के ऊपर भी अनुदान है,
1: पौधारोपण पर भी अनुदान है और वो
0: ड्रिप इरीगेशन पर भी
1: सब,
0: और टैंक खोदने पर भी।
1: यानी फायदा उठा इसका
0: फायदा बिल्कुल।

0: जिन्होंने बाग लगाना है वो बागवानी महकमे से कंसल्ट करें जा करके, और वो सारी चीज़ें आपको गाइड करेंगे बहुत अच्छे से, और उसमें आपको काफ़ी आर्थिक मदद मिल जाती है। तो ये ज़रूरी है, एक ये काम भी बाग लगाने से पहले कर लें। आप महकमे में जाके जो ज़रूरी कागज देने वो दे दें, ज़मीन की फर्द है, टैंक खोदना तो उसका टैंक का आपने नक्शा बनाना है, वो सारी चीज़ें मतलब पूरी करके जब आपने पौधारोपण करना उस टाइम आपका टैंक भी बना होना चाहिए, आपकी ड्रिप इरीगेशन भी इंस्टॉल हो जाए और वो चलती होनी चाहिए, ताकि जो ही आप बाग लगाओ आप ड्रिप इरीगेशन से पानी दे दो तो पौधों की जो मोर्टिलिटी है वो बहुत कम होगी।
1: यानी ये कहने का मतलब है कि हर तरह की चीज़ का पहले पता करें।
0: बिल्कुल, यस।
1: बाग मान लो आपका ये है भाई बाग लगाना है, विभाग द्वारा के किस स्कीम है, कितना अपन अनुदान मिलेगा, किन किन कागजात की अपन जरूरत पड़ेगी, और पौधा आप कहाँ से लें, मिट्टी पानी की जांच से भी किस तरह के बाग लगावें, तो आपने विस्तृत जानकारी लेके बाग लगाना।
0: बिल्कुल, हर एक ब्लॉक पे बागवानी अधिकारी बैठे हैं, अब हर ब्लॉक के ऊपर बागवानी अधिकारी हैं, तो आप अपने ब्लॉक में जा करके पता कर लें, बागवानी अधिकारी से मिलें, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हर ब्लॉक में बैठे हैं, और बाय द वे वहाँ कोई पद खाली है नहीं है उपलब्ध, तो आप जिला बागवानी अधिकारी से मिलें। हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर की ऑफिस हैं, जैसे हिसार में अपनी अनाज मंडी में है, इसी तरह से भिवानी में भी अनाज मंडी में है, फतेहाबाद में भी सब्जी मंडी में है, और इसी तरह हमारा सिरसा के अंदर भी वो हमारा जो फार्म है उसके अंदर जिला बागवानी अधिकारियों के ऑफिस हैं। अगर आपको HDO साहब से मिलना हो तो वहाँ मिलें, और उसके बाद आप वहाँ जाएं। हाँ जी बोलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी, हाँ जी बोलिए।
2: मेरा एक सवाल है जी, माँ आपका 6 फुट तक मिट्टी की जांच करें तो ये चारों कोणों से एक बीच से इसी तरह लेने की और फसल की लेते हैं जहाँ पे
1: वो नमूने ही बात करें?
0: नहीं, चार आप नॉर्मली एक एकड़ में एक जगह से ले लें, बीच सीख से ले लें।
2: हाँ जी,
0: एक जगह से ले लें, चार जगह से जरूरत नहीं है इसमें आपको।
2: अच्छा, एक जगह बीच से ले लें मान लीजिए।
0: हाँ हाँ हाँ, क्योंकि चार
2: जगह से। दूसरा जी, मारा एरिया रायपुर शिकारपुर गाणी ये न्याणा सेम का एरिया, यहाँ पर 4 फुट नीचे तो पानी आ जाता है।
0: देखिए, मैं इसीलिए ये बात आपने बहुत सही पूछा। हाँ हाँ, आप जो है पहले बागवानी अधिकारी से मिलिए और उनको बताइए कि हमारे 4 फुट पे पानी आ जाता है और बारिश होती है तो 2 फुट पे आ जाता है, तो फिर
2: एरिया तो मेरे ख्याल में बाग कामयाब नहीं होगा।
0: नहीं होगा, वही बात है ना, ऐसी जगह पर हम फिर बाकी
2: आ जाएगा जी, फिर सेम ऊपर आ जाएगी।
0: हाँ, हम बाकी सिफारिश नहीं करते ऐसे एरिया में जहाँ पानी ऊपर आ रहा है। कम से कम भी 10 फुट चौवा हो वहीं पर सिफारिश, क्योंकि हम टैंक खुदवाएंगे तो और भी पानी निकले आओ, आप खड्डा खोदोगे उसमें पानी निकले आओगा तो पौधे नहीं चलेंगे ऐसे।
2: हाँ जी सर, डॉक्टर साहब।
0: जी जी हाँ, इस बात का
2: तो सारा प्रोग्राम सुन के फिर मेरे यही सलाह, मैं अपना गम्मा मिलावा तो डॉक्टर साहब ये सलाह दें पहले तो।
0: हाँ नहीं, आपके जहाँ पर भी पानी इतना ऊपर है, 4 फुट पे है, 3 पे 5 पे, वहाँ हम सिफारिश नहीं करते बाग लगाने की, वहाँ तो आप सब्जी करो दूसरी फसल।
2: धन्यवाद डॉक्टर साहब
0: जी।
1: तो भाई साहब आपका नाम तो बताओ रहा, वो आपने
0: ये शिकारपुर से थे।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: तो इसमें मेरे ख्याल से तकरीबन सारी प्रक्रियाएं आपने बातें कर ली हैं
1: जी,
0: नए बाग लगाने की भी और अब जो बाग लगे उनकी देखभाल की भी।
3: और केस भाई भी अपने तो रही सार मंडी के बाजार भाव भी आगे हैं, सरसम का भाव रहा 6,150 रुपये तक, 7,265 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं भी किया 2,585 रुपये प्रति क्विंटल, जौ का भाव रहा 2,011 रुपये प्रति क्विंटल, गवार भी किया 3,525 तक 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, और कपास का भाव रहा 5,610 तक 7,699 रुपये प्रति क्विंटल।
1: और भाइयों, हिसार की मंडी में जो टमाटर भी किया 2,500 से 4,000 रुपये, प्याज का भावरा 1,500 से 1,700 रुपये और आलू भी क्या 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल।
3: और कृषि मौसम विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 5:10 पर जारी मौसम के अनुसार अगले 3 घंटों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, नू, फरीदाबाद, पलवल, जींद, रोहतक, झज्जर, इन जिलों में धूल भरी हवाएं चलने, गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है, और इसी दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम और तेज बारिश भी संभावित है।
1: तो भाई ये आज का मौसम था। डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए और इतनी विस्तृत जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। आपका भी धन्यवाद।
3: किसान वाणी का समय समाप्त होने लग रहा है, थोड़े से अंतराल के बाद मिला।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना फोन इन कार्यक्रम। आज का विषय था गर्मियों में फलदार बागों की देखभाल कैसे करें। आमंत्रित विशेषज्ञ थे डॉक्टर बलजीत भयान। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी हिसार है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महारे गांव।

0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
3: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
4: कार्यक्रम मारेगा में एक बार फिर बहन भाई का स्वागत करा है आपकी बहन सावित्री
5: और अरकेश भाई।
4: और अरकेश भाई कार्यक्रम मारेगा में पहुंच गए हैं और जब भी आप हमारे गांव में आवा तो कोई कोई ऐसा बढ़िया विषय लेकर आया करा कि बहन भाइया ने उसमें अपनी फसला में फायदा हुआ है और बहन भाइया की आमदनी बढ़े, तो इसी विषय में एक स्कीम के आप आज बात करांगे जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
5: और देखो भाई ये जो सरकार की है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो किसानों का जो फसल का नुकसान जिस तरह प्राकृतिक आपदा है या फिर कीट पतंग बीमारी, तो उसके लिए ये है कि उस जो किसान भाई है उसके वित्तीय सुरक्षा प्रदान करी जाए। यह योजना है 2016 में शुरू करी गई और पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया।
4: और देखो यह बहुत एक अच्छी योजना है, किसान बड़े भाइयों का किसी भी डालते अगर खेती में नुकसान हो जाए तो उसमें किसान बड़े भाइयों ने मुआवजे के रूप में कुछ राशि मिल जाए जिससे उनकी कुछ भरपाई हो जाए। इसकी मुख्य विशेषता यही है कि कवरेज बुआई तक कटाई तक अपनी जो फसलें हैं कुछ मामलों में तो जैसे पहले फसल काटे ग्रहण लान तक की इसमें बात करें तो जैसे हल बाढ़ आ जावे जिस तरह ओले पड़ गए और अपनी एकदम कई बार कैसे भाई जो करे कपास की फसल है इसमें वो खेड़ा आ जाओ भारी मात्रा में, तो इस प्रकार की जो है हमारी नुकसान तो उनकी भरपाई हो जाए अगर हमने फसलों का बीमा कराया हो तो।
5: और भाइयों जिसकी आपने प्रीमियम की दरें बतावा जो खरीफ फसल है ईब जो फसल बीजेगी उसमें न्यू है कि 2% जो बीमा राशि का है 2% और रबी फसला में जो है वो 1.5% आपने देना पड़ेगा और जो बागवानी फसलें हैं उनमें 5% जो है जो बीमा राशि उसका आपने देना पड़ेगा, बाकी प्रीमियम सब्सिडी केंद्र राज्य सरकार मिलके हैं वह देंगी।
4: और इसकी जो पात्रता है वह 18 वर्ष से अधिक के जो भी हमारे किसान बहन भाई हैं, चाहे वो महिला किसान है चाहे वो पुरुष किसान है, चाहे उसने KCC ले रखा है बैंक द्वारा या नहीं ले रखा है, या आपको बटाई पे आप जमीन बो हो या आपने कोई एग्रीमेंट करके जमीन ले रखी है किसी भी प्रकार की हो तो आप अपना फसल बीमा करवा सके हैं।
5: और आप जो हैं जो किसान भाई हैं वो आवेदन जो है वो ऑनलाइन कर सके हैं, इसके लिए आप जो है आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर pmfby.government.in पर जाकर के अपना जो है वो आवेदन कर सके हैं।
4: हाँ भैया ने एक बार साइट पे बता दे हैं pmfby.gov.in पर जाके आप अपना साइट खोल के उस पर अपने आवेदन अपने फोन द्वारा भी आप कर सके हैं।
5: और यदि आप ऑफलाइन करना चाहो हैं तो जो नजदीकी बैंक शाखा है या फिर CSC यानी जितिया पे जन सेवा केंद्र का ध्यान या फिर प्राथमिक कृषि ऋण समिति या बीमा कंपनी के माध्यम से भी जो है आप ऑफलाइन आवेदन कर सके हैं।
4: और भाई एक निश्चित डेट जरूर दिया करें जिस तरह 31 जुलाई खरीफ के लिए संभावित डेट हुआ है तो कई बार डेट बढ़ भी जावा, अगर आप बार बार आपने सूचना दे दी जावा अखबारों के माध्यम से या हमारे प्रोग्रामों के माध्यम से कि खरीफ की फसल के लिए बीमा कराने की एक निश्चित तिथि कौन सी है तो उस तक आप बीमा करवाओगे तो ही आप इस योजना का लाभ उठा पाओगे। कई बहन भाई टाइम पर एक सीमित समय में बीमा नहीं करवा पाते और बाद में नुकसान हो जाए तो फिर इस बात का बड़ा हमने दुख हुआ है कि भाई का भरपाई नहीं हो पाती, तो कोशिश करें कि जो भी एक तारीख दे जाए निश्चित उससे पहले पहले आप अपनी फसल का बीमा जरूर करवा लें।
5: और भाई जो जरूरी दस्तावेज रहेंगे उसमें एक तो आधार कार्ड रहेगा भाई, एक रहेगी जो बैंक में जो पासबुक है वो रहेगी, भूमि दस्तावेज जिस तरह मैंने जो खसरा है खतौनी है मालिकाना प्रमाण पत्र आपका रहेगा, फसल का विवरण और पहचान प्रमाण पत्र भाई ये चीजें आपने दिखानी है, या आप तो आधार कार्ड बैंक की पासबुक भूमि के दस्तावेज और फसल विवरण और पहचान प्रमाण पत्र जिसमें आप जो है आधार कार्ड है वो दे सके।
4: और जो ऋण लेने वाले किसान बहन भाई है वो अक्सर नहीं सोचे कि ऑटोमेटिक अपना कवरेज हो जाएगा। देखो कई बार ऑटोमेटिक नहीं होता, समय समय पर आपने बैंक में जाके लिख के देना पड़ेगा कि हमने बीमा करवाना है कि नहीं करवाना। अगर आपने करवाना हो तो यस बोल के, नहीं करवाना है तो आप लिख के दे के आवे। कई बार हम इस बात में रह जावा कि जब हमारा तो केसीसी है तो अपने आप ही ऑटोमेटिक बीमा हो जाएगा, तो आपने यस और नो लिख के बैंक को दे करना पड़ेगा टाइम टू टाइम जब आपने बीमा करवाना है।
5: देखो सावित्री बहन, बातचीत भाइयों गले जारी रखांगे और ईव करावांगे भाइयों का मनोरंजन और भाइयों सुनाऊंगे रागनी।
6: तेरे दीन ते बेदीन हो गए और घर ते बेघर हो लिए भाई।

बिजली कैसा चमक रहा सुंदर शरीर फोटू में।

0: कोई या अच्छी करनी करियकी
1: अच्छी करनी करियकी
0: और दासी बंदी इटहल करे किसी मस्त जवानी भरी की देखे रूप

0: ये सुनी भैया ने रागनी बाली शर्मा और साथियों की आवाज में,
1: और
0: वो बात
1: हाँ
0: करे थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। और देखो सावित्री बहन, यदि मान लो फसल में नुकसान हो जाए है किसी भी कारण, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, बाढ़ हो, सूखा हो, या कोई बीमारी आ जाए, या कोई कीट, कई बारी बीमारी ज्यादा आ जाए हैं, तो उस अवस्था में जो आपने बताया जाए किस तरीके आप क्लेम करें।
1: देखो, नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर अंदर सूचना जरूर देवे अपने हेल्पलाइन नंबर पर या बैंक में या सीएससी द्वारा जाके या कृषि विभाग में, जहां भी आपका जितना नुकसान हो, या कई बार किस भाई एक एरिया में नुकसान हो जाए, कई बार पूरे गांव में नुकसान हो जाए है, कई बार एक साइड ज्यादा बारिश हो जाए, एक कई बार एक साइड में ज्यादा बीमारी का प्रकोप हो जाए, तो इस प्रकार का जब हो तो पूरे एरिया के या पूरे गांव का तो आप जाके कृषि विभाग में संपर्क कर सके हैं। और जब आप सूचना दे देंगे उसके बाद एक सर्वे के द्वारा तय निश्चित किया जाएगा कि आपका फसल में कितना नुकसान हुआ है, उसके आधार पर भी आपके के लिए बीमा राशि जारी करी जाओगी।
0: और देखो भाई, आपने जो महत्वपूर्ण जो हेल्पलाइन वो बताया दिया, इसमें एक तो है कृषि रक्षक पोर्टल है, और हेल्पलाइन है इसकी 1444-7, एक है व्हाट्सएप चैट बात, ये है 70-65-51-44-47, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आपने क्या करना पड़ेगा कि जिस तरह मान लो नुकसान हो गया, उसके 72 घंटे के अंदर जो है आपने उसमें सूचना देनी पड़ेगी।
1: देखो, बीमा करवाना सारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आपने एक मामूली सी राशि देनी पड़े है, बाकी की राशि हमारी हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार द्वारा दी जावे है। जब भी कई बार देखा राकेश भाई, हर साल लगभग अब देखने में आ रहा है, कई भी बार तो सूखा पड़ गया, कहीं पर ज्यादा बारिश आ गई, जब कटाई के टाइम पर बारिश आ गई तो फसल ज्यादा नुकसान हो गया। तो पिछली बार भी ऐसे हुआ था, जिन किसानों और मैडम भाइयों के बीमा था और जिन्होंने अपने पोर्टल पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा डाल रखा था। देखो, दोनों चीजें करनी बहुत जरूरी है, अगर आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा भी डाल रखे और बीमा करा रखे तो आपका संभावित है जो बीमा क्लेम बनेगा वो जरूर आएगा। और कई बार बार बार भाई एक बात डालते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा डाल दिया या बीमा करवा दिया, उनमें से एक हो गया तो उसमें थोड़ा सा क्लेम आने में देरी हो जाए है, तो उसका अपने बार बार जाके संपर्क करना पड़ा है। और बार बार जाके संपर्क करने के बाद भी कई बार ही बहन भाइयों का बीमा क्लेम अटक जाए, तो उसमें अपने दुविधा हो जाए कि हमने बीमा करवाया था, हमारा क्लेम क्यों नहीं आया। और कोई भाई बीमा नहीं करवाते तो एक सामूहिक तौर पर जब पूरे गांव का या पूरे एरिया का सर्वे हो तो एक एक मुश्त राशि भी तैयार करी जावे है कई बारी, तो वह जब दी जाओगी, जब आपकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आपकी फसल उपलब्ध होगी।
0: और देखो सावित्री बहन, यदि देर लाग जी इस काम में तो फिर ब्याज भी मिल जी, तो ये ना सोचे भाई देरी लागगी उस कारण तो जो है ना वो आपने नाराज होने की जरूरत नहीं है। यदि देरी लागगी तो आपने फिर उसका जो है ना वो ब्याज भी मिल जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं भाई हर किसान के लिए कि अपनी जो है फसल का बीमा आप जरूर करवाएं।
1: पर समय सीमा में करवाना बहुत जरूरी है, जो जैसे खरीफ की फसल का 31 जुलाई तो पे आमतौर पर हुआ है, कई बार डेट बढ़ाकर 31 अगस्त भी कर दी जावे है, तो समय सीमा में बहन भाई हम कहेंगे कि अपनी फसल का बीमा जरूर करवावे और एक जो उचित लाभ आप ले सकें सरकार द्वारा वो जरूर लेवे।
0: भैया गले बातचीत जारी रखेंगे और ईब करावेंगे भैया का मनोरंजन, और भैया ने सुनाऊंगे रागनी।

0: ये तो बहन भैया का मनोरंजन करवा दिया पाले राम दैया और साथियों की आवाज में।
1: और ये भाई देखो, गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, बल्कि ज्यादा गर्मी पड़न लग रही है। तो इसमें आपने सावधानी रखने की बहुत जरूरत से, एक तो ये है कि जिस टाइम भी आप घर से बाहर निकलें, पानी पी के निकलें, दूसरा भाई अंगोछा साथ में रखें, क्योंकि कपड़ा जरूर होना चाहिए साथ में। ये गर्मी के मौसम में बहुत सावधानी रखने की। इसके अलावा खान पान

0: जो भी पानी जनित बीमारियां हैं वो उनका भी बंटवारी सी मौसम हो गए हैं।
1: और ये सावित्री बहन देखो, खाली पेट बाहर ना निकले, क्योंकि कुछ खाए पी के ही घर तक अपने निकले, चाहे दही है भैया, यदि आप हल्का नाश्ता जरूर करके निकले।
0: बिल्कुल, अगर खाली पेट आप घर से जाओगे तो लू लगने की, गर्मी लगने की ज्यादा संभावना बनी रहेगी, तो हल्का फुल्का भोजन करके जाओ। साथ में अगर कहीं दूर जा रहे हो तो थोड़ा सा हल्का सा भोजन आपके साथ में फ्रूट वगैरह है तो भी अच्छी बात है। सावधानी से बात की रखनी है कि आपने कहीं भी दोपहर के टाइम 11 बजे के बाद और 4 बजे के से पहले कोशिश करें, अगर कोई जरूरी काम हो तो अब लू में बाहर ना निकले।
1: देखो भाई, काफी तेज और गर्म हवा जो है वो चालन लग रही है। यदि आप खुद का बचाव

0: इसी के साथ घड़ी की सुई सारा करी है कार्यक्रम हमारे गांव का समय समाप्त होने लग रहा है। अपनी बहन सावित्री बुगालिया ने
1: और राकेश भाई ने दे इजाजत सारे बहन भैया ने। राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महरेगांव FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी हिसार है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति व्हाट्सएप के बहाने, फिल्मी तराने।

व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने कार्यक्रम की इस खास प्रस्तुति में तमाम चाहने वालों का स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, एक दौर हुआ करता था जब खतों का इंतजार हुआ करता था। आज समय बदला, तौर तरीके बदल गए, वो दौर भी बदल गया और

तो शुरू करते हैं व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने का आज का ये अंक। और श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंचेगा उन तमाम चाहने वालों की उम्मीदों को समेटे हुए। मोहब्बत जब दिलों के साथ साथ दो रूहों को मिलाती है, यानी मोहब्बत जब दो दिलों के साथ साथ दो रूहों का भी संगम है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा, तो जिंदगी अपने आप में बेहद खूबसूरत बन जाती है।

वाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा जी। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, यश प्रयाण, शिवम प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के तमाम सदस्य रहेंगे, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। इन तमाम श्रोताओं के साथ मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़ कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। इन तमाम श्रोताओं के साथ संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोपाली जिला यवतमाल से हमारे श्रोता रहेंगे जयराम सिंघनकर, दिशांत कुमार और अर्पिता। इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ एक और संदेश हम शामिल करते हैं। दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन येले, यवदीप, नवदीप येले, विश्वदीप, सुशील, शेरी वडनेर, अकोला से अरुणा, बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। गांव चौधरीवास जिला हिसार से हमारे श्रोता रहेंगे मांगेराम सतोड़, रीतु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार। तो इन तमाम श्रोताओं के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और श्रोताओं, मोहब्बत की सबसे खूबसूरत नींव होती है भरोसा। जब दो दिल एक दूसरे का हाथ थामते हैं श्रोताओं, तो साथ निभाने वाले वादे करते हैं जिंदगी की सबसे अनमोल पूंजी बन जाने का। इसी खूबसूरत एहसास को अपने सुरों में पिरोया है फिल्म आ गले लग जा, जो आई 1973 में ही। इस सदाबहार गीत के इन शब्दों ने रिश्तों की डोर वादों से मजबूत होती है निसंदेह, मोहब्बत की राह भरोसे से रोशन होती है, बिल्कुल ठीक। जब कोई कहे कि उम्र भर साथ निभाएंगे, तो हर धड़कन खुशी की धुन बन जाती है। और इन धुनों को अपनी मधुर आवाजों से सजाया है किशोर कुमार और लता जी ने। संगीत अब की बार रहेगा सचिन देव बर्मन के सुपुत्र यानी आरडी बर्मन साहब का, और गीत को लिखा साहिर लुधियानवी जी ने। तो सुनते हैं इसी प्यार और भरोसे को मजबूत करता ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने, और इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। और आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम के अगले गीत की ओर रुख करते हैं। और हमारे बहुत सारे चाहने वाले कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के श्रोता रहेंगे रामकरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल्ला और दिव्यांशी विश्वकर्मा। सिद्धार्थ नगर, दरियापुर, बावली से गजानन, नवदीप, येले, विश्वदीप, सुशील येले, शेरी वडनेर, अकोला से अरुणा, बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर। इन तमाम श्रोताओं के साथ तेलंगाना भोंगीर से हमारे श्रोता जुड़ेंगे मोहम्मद बुराहनुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा आजीम गुड़िया। इन तमाम श्रोताओं के साथ भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, हर्ष आहूजा। और लीजिए अगला संदेश हम तक पहुंचा है जिला वरंगल से मोहम्मद खाजा रिवाजुद्दीन, मोहम्मद खजा फजियुद्दीन और आयशा तबुस्सम और जुबेरिया का। इन तमाम श्रोताओं के साथ जमशेदपुर झारखंड से हमारे श्रोता रहेंगे सुपाही साही, गांव से श्रोता रहेंगे देवेंद्र ताती, राकेश प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवन। और इन तमाम श्रोताओं के साथ जुड़ते हैं दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसवणी वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। गांव चोली देशवाली, जिला हिसार से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, दड़ोली से रघुवीर मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा और राम निवास पांडू। गांव कुम्हार हिड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब। इन तमाम श्रोताओं के साथ जुड़ते हैं चकला बाजार समना शहर पंजाब से पप्पू राजा, खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल और खुशदिल परिवार के सदस्य। कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा, जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। नेहरू चौक पैठन से हमारे श्रोता रहेंगे डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, जो सोनम और बेबी सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम जाधव, सुभाष, चंदन एकनाथ और संगीता जाधव। इन तमाम श्रोताओं के साथ नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से श्रोता रहेंगे पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल सोपान और नारायण इंगले। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से मोहम्मद याकूब आसमा कुरेशी, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरेशी, जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, अल्ताफ बेलदार, कल्लू मल्लू कालिया बेलदार, ये तमाम श्रोता कार्यक्रम से जुड़ते हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता। छठिया पोखर डूराव से फातिमा वली बेलदार, डब्लू वली बेलदार, आसमा वली, सोनम वली और बिहार भवन दिल्ली से अकरम कुटोरिया और उल्लाह कुटोरिया। इन तमाम श्रोताओं के साथ सतीश अनेजा, बिमला अनेजा चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं कार्यक्रम से। और लीजिए अगला संदेश हम तक पहुंचा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का। गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। लोहारू हरियाणा से ये संदेश हम तक पहुंचा है बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार और तमाम परिवार के सदस्य कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत असमा कौर, धर्मजीत फातिमा कौर। और लीजिए भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता रहेंगे धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार। अनार कली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक, जयपाल यादव और इनके मित्र विनोद पुरी। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। तो आइए श्रोताओं, इन तमाम श्रोताओं के साथ सुनते हैं अभिनेता जितेंद्र साहब और अभिनेत्री रीना रॉय पर फिल्माया गया वो शानदार गीत, जिस गीत के लिए कहें तो हम ये कि दिल भी कितना नाजुक होता है बिल्कुल कांच की तरह है।
एक छोटी सी ठोकर, एक छोटी सी आहट से, एक अनकहे शब्द से, अपने किसी के बेरुखी बर्ताव से दिल में कहीं ना कहीं श्रोताओं दरार पड़ जाती है। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि टूटने के बाद में रिश्ते फिर उसे उन्हें जोड़ तो लिया जाता है, लेकिन निशान अक्सर रह जाते हैं। रिश्तों की कीमत तो उन्हें खोने के बाद समझ आती है। दिल की नाजुकियत हर किसी को कहां नजर आती है। जो प्यार को सहेज कर रखते हैं उम्र भर, उनकी जिंदगी खुशियों से महक जाती है। कुछ ऐसे ही एहसासों को लिए हुए है ये गीत, जिसे फिल्माया गया है रीना रॉय पर और स्वर गूंजेगा स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का। गीत के इन शब्दों को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और उतना ही संगीत, मधुर संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने। तो आइए सुनते हैं आशा फिल्म का, 1980 में ये फिल्म आई, जिसका गीत आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, वाकई लिखा तो खूब है गीतकार ने कि शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। बहरहाल आकाशवाणी हिसार का पूरा प्रयास रहता है कि हमारे किसी श्रोता का दिल न टूटे। हम तो भाई जोड़ने का काम करते हैं, दिलों से मोहब्बत का रिश्ता निभाने का कार्य करते हैं और सदैव तत्पर रहेंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी हिसार आप सभी के दिलों के साथ जुड़ा हुआ है। और लीजिए, दिलों से दिल जब मिल जाते हैं तो हमारे पसंद करने वाले श्रोता हम तक संदेशों के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो अगले गीत के लिए हमारे तमाम श्रोता जुड़ते हैं। कृष्ण कुमार डाभी, भूपत कुमार डाभी, राधा डाभी, विक्रम अर्चना और साक्षी डाभी, ये गांव टूकिया, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान से हमारे श्रोता रहेंगे। इन तमाम श्रोताओं के साथ अस्मा थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, सरगुजा मेनपॉट से हमारे श्रोता रहेंगे, वसीम थापा और अक्रम थापा, झांसी से फकरुद्दीन अंसारी, फर्जी वली अंसारी, फर्जुद्दीन अंसारी और फर्जु वली अंसारी, ये तमाम श्रोता रहेंगे। इन तमाम श्रोताओं के साथ सप्तरंग श्रोता परिवार के श्रोता जुड़ते हैं। कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका, सानिका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवनी, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवनी, दीवाना रेडियो लिसनर क्लब जमानिया, गाजीपुर यूपी से सुरेश, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से बिपिन, स्वाति, देवकुमार और आर्य कुमार कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ श्रोता जुड़ेंगे कोयते वसी पुनावले से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा और सायशा, इन तमाम श्रोताओं के साथ बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनई, बुजुर्ग पलेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से श्रोता जुड़ते हैं। गमरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदोली से विजय सरोज, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू देवंती, चकिया बाजार चंदोली से सुंदर और सुमन जायसवाल कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। छोटी बड़ी बलिया मुंबई कजरत से अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया और आशु अहमद फूलवाले, इन तमाम श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता रहेंगे। जो जुड़ते हैं जिला भिवानी दादरी गेट से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से श्रोता रहेंगे मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा, गांव हीपरसोगा तहसील औसा जिला लातूर से उस्मान शेख, फौजी, सायरा बानु शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख, इन तमाम श्रोताओं के साथ जुड़ते हैं हमारे श्रोता। रेलवे कॉलोनी लूनी से आफ्ताब उल्लाह डोम, अल्ताफ उल्लाह डोम, सोनम नाज डोम, सरफुद्दीन वली डोम, फातिमा वली डोम और बेबी अंसारी डोम, भोई वाड़ा पैठन से शेख चांद, फूर खान, गफूर खान, जाकिया बाजी, अदनान, नुमान, आसमा और खुशी, इन तमाम श्रोताओं के साथ मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस और चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनीजा, इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, मोताला महाराष्ट्र से विजय रतनमाला और ओम सलूरकर कार्यक्रम से जुड़ते हैं। जय जैनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रितेश संघई, प्रज्ञेश और समस्त संघई परिवार के सदस्य कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरव शर्मा, सायना और निवान शर्मा, गांव हीरा वाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा कार्यक्रम से जुड़ते हैं। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल, ये तमाम श्रोता रहेंगे चक 5 MD पत्रोड़ा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से हमारे श्रोता रहेंगे जगदीश, प्रमिला, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु, दोहती
ईवा धारणिया, ये तमाम श्रोता कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम के इस अंतिम फरमाइशी नगमे के लिए हम शामिल कर लेते हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी को। ये तमाम श्रोता रहेंगे बेनीपट्टी जिला मधुबनी बिहार से। और लीजिए रेंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जुड़ रहे हैं कार्यक्रम से। इन तमाम श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता रहेंगे धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा। और लीजिए कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं हमारे श्रोता।

गांव बांडीवाला, फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश और योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंद्रा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया, तीन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में अब शामिल कर लेते हैं हमारे इन श्रोताओं को जो जुड़ते हैं हमसे आकाशवाणी हिसार से। गांव में डाकघर निमनाबाद जिला जींद, हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। एस एम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, गुमला झारखंड से हमारे श्रोता रहेंगे। तो इन तमाम श्रोताओं के पसंद पर आइए कार्यक्रम का अगला गीत और अंतिम गीत सुनते हैं। फिल्म में रहेगी श्रोताओं कर्ज। दिल की दुनिया वास्तव में बहुत अजीब होती है। कभी प्यार मुस्कान बनकर होठों पर सज जाता है तो कभी वही प्यार श्रोताओं दर्द बनकर दिल की गहराइयों में उतर जाता है। लेकिन सच्ची मोहब्बत का दर्द एक अलग मिठास लिए होता है। दर्द जब दिल की जुबा बन जाए तो हर धड़कन एक कहानी सुनाए। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते मगर उम्र भर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। ऐसे ही जज्बातों को सुरों में ढाला है फिल्म कर्ज के इस यादगार गीत में। सुपरस्टार ऋषि कपूर साहब पर यह गीत फिल्माया गया। मोहम्मद रफी साहब की दर्द भरी और दिलकश आवाज आप सुनेंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का उतना ही खूबसूरत संगीत इस गीत में सुनने को मिलेगा और आनंद बख्शी साहब ने उतने ही भावपूर्ण शब्दों को इस गीत में लिखा है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने का ये अंतिम गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने कार्यक्रम समेटने के अपने आज के इस सफर के हम सफर शिवानंद वाशिष्ठ को दे अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% तक कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टॉक सेल नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
8: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप

0: से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक अपारा मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप है। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल है। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख

0: लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपके लिए में। आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से नगमे के साथ, जिसे लिया गया है गजल फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, मदन मोहन का

सुन रहे थे अर्थ फिल्म से यह गीत। जगजीत सिंह की आवाज में कैफी आजमी के बोल और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। एक नगमा आपके नाम किया, चलिए चलते हैं आपके लिए इस कार्यक्रम में अगले नगमे की ओर, जो कि है बाजार फिल्म से। लता मंगेशकर, तलत अजीज की आवाजें हैं, मखदूम मोहिद्दीन के बोल हैं और खयाम का संगीत।

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ गीत भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से तलत अजीज की आवाज में शहरयार के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस गजल को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए मैं आज की अंतिम गजल। मासूम फिल्म से है और अनूप घोषाल की आवाज है, गुलजार के बोल हैं और आर डी बर्मन का है संगीत।

0: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम आपके लिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: सारी हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की वे पकाए भूर की,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1950 में बाबूलाल चतुर्वेदी को यहाँ प्रोग्राम था दिल्ली से।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने भी फोन किया कि मेरे यहाँ हम डोरी रिकॉर्ड करना चाहते, तुम बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाने गाते नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन चंदा मामा दूर के पूरे पता दूर के।

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौर जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने, मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई है अमर जो बिजनेसमैन है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद, ही इज ऑल्सो प्रोफेशनल सिंगर, और सबसे छोटे

0: से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौर एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौर ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस एक ग्वालियर टैंक पे एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहां पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफी म्यूजिशियनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा प्यार, और गाने बजाने की बातें ज्यादा होती थी rather than gossip। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो जो आवाज, जो तबले की जो पहली आवाज या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पे डाला कि अगर मैं रो रहा हूं और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज मुझे सुनाई दी और मेरी आंख खुल गई और मैं रोने लगा, इज्जत करने लगा। और फिर खान साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो बाकी वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज ए प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: जी आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे, मुझे बताएंगे कौन कौन आते थे?
1: अबाजी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह रखा
1: और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोजर हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमी अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और कौन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परख्या, तो कुछ चीजें जो है वो देखने से आई, कुछ चीजें सीखने से आई, और कुछ चीजें जो है अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, खास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सबको देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्यास की, जैसे एक लव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्यास की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफी चीजें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीजें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गजलें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला, उसमें से ये एक चीज जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बड़ा भी याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहां मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में,
0: और वहां पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई, उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही, और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौर को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: पास में उसे भूल जाना, वो मेरी मोहब्बत का गुजरा जमाना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश,

दिल पे मत ले यार गजगामिनी, रहना है तेरे दिल में वीर।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रमों को। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी हिसार है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है ईमेल्स पर आधारित ई फरमाइश का आज का ये

आकाशवाणी हिसार के इस विशेष कार्यक्रम ई फरमाइश के अंतर्गत तमाम संगीत प्रेमियों का स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, आज के इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे उस सुनहरे दौर में जब मोहब्बत की बातें आंखों से हुआ करती थी, जब इकरार में सादगी थी, भोलापन था, अपनापन था और इंतजार में कशिश थी, मिठास।

था। ये वो दौर था श्रोताओं, जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि महसूस किए जाते थे। दशक बीत गए, हिंदी फिल्म संगीत का वो स्वर्णिम युग शायद लौट कर न आए। उस युग में श्रोताओं किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मन्ना डे, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर जैसे महान गायक गायिकाओं ने अपनी आवाजों से तमाम संगीत प्रेमियों के दिलों को धड़काया। तो आइए आज के इस ई फरमाइश कार्यक्रम का आगाज करते हैं। मोहब्बत की खुशबू हवाओं में घुल रहती है, मोहब्बत की खुशबू हवाओं में घुली रहती है, इन गीतों की तरह दिल में बसी रहती है। वक्त भले ही बदल जाए, दौर भले ही बदल जाए, लेकिन सच्ची मोहब्बत हमेशा जवां रहती है। तो इसी जवां दिली के साथ श्रोताओं, आज का ये ई फरमाइश का ये अंक आइए शुरू करते हैं। और कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंचेगा श्रोताओं, फिल्म रहेगी 1978 में आई, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की दिलकश आवाजें हैं, और फिल्म रहेगी देवता। और हमारे तमाम देव तुल्य श्रोता जो हैं, जो कार्यक्रम से जुड़ते हैं, वे रहेंगे सेक्टर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा से विनय मोहन खानवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत हम शामिल करते हैं नागजुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हमारे श्रोताओं को अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक टावर, जियाउल हक टावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, इन तमाम श्रोताओं के साथ ही रहेंगे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़ कार्यक्रम से जुड़ते हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, ये तमाम श्रोता रहेंगे। पाकुड़ झारखंड से बोहड़ा गाछी, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत कार्यक्रम से जुड़ते हैं। मुंदीचक भागलपुर बिहार से हमारे श्रोता रहेंगे दिलीप कुमार सोनी, और इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शिरकत करते हैं मुकाम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानू बी मुलानी और बादशाह मुलानी और समस्त परिवार के सदस्य है। और लीजिए चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा जी की फरमाइश हम तक पहुंच गई है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय धींग्या, नमन धींग्या और अपार धींग्या कार्यक्रम से जुड़ते हैं। श्रोताओं आपसे गुजारिश की एक मील के बाद आप प्रतीक्षा करें, बहुत सारे श्रोता फिर रह जाते हैं श्रोताओं कार्यक्रम में शामिल होने से। एक से अधिक मेल आप यदि करेंगे तो कार्यक्रम में आप देखिए अन्य श्रोताओं की जगह, उनका हक जो है आप ले लेंगे, जो कि अपने आप में समझदारी का परिचय नहीं है। तो शिव मंदिर हकीकतपुर पूरा मऊ से हमारे श्रोता रहेंगे मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा, पीहू, इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश के श्रोता सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया, इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा कार्यक्रम से जुड़ते हैं। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और

बारासा, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल सोपान और नारायण इंगले। तो इन तमाम श्रोताओं के साथ आइए ई फरमाइश का आगाज करते हैं। आरडी बर्मन साहब का संगीत रहेगा, संजीव कुमार और शबाना आजमी पर यह गीत फिल्माया गया। गुलजार साहब ने श्रोताओं इस गीत को लिखा है। देवता फिल्म रहेगी और मोहब्बत जब अपने शबाब पर होती है तो हर मोहब्बत करने वाले प्रेमी को लगता है कि जैसे वह अपने महबूब के लिए आसमान से चांद तारे भी तोड़कर ला सकता है। प्यार की दुनिया में हर ख्वाहिश खूबसूरत लगती है और हर सपना हकीकत लगता है। मोहब्बत की राहों में कुछ ऐसे ख्वाब सजते हैं कि चांद भी जमीन पर उतर आने को तरसते हैं। श्रोताओं, ई फरमाइश कार्यक्रम का आइए आगाज करते हैं।

देवता फिल्म का श्रोताओं आपने गीत सुना। संजीव कुमार और शबाना आजमी पर इस गीत को फिल्माया गया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की सुरीली आवाजें इस गीत को और भी दिलकश बना रही थी। गुलजार साहब ने इस गीत के बोल लिखे थे और आरडी बर्मन साहब ने इस गीत की मधुर धुन तैयार की थी। श्रोताओं आप सुन रहे हैं फरमाइश, और नए श्रोता कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नोट कीजिए हमारा ई पता, यानी ईमेल का पता RADIOHISAR@gmail.com पर भेज

ये आप अपनी फरमाइश और लीजिए हम शामिल करते हैं हमारे इन तमाम चाहने वालों को। हमारे श्रोता जुड़ेंगे कार्यक्रम से गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढूकिया, प्रमिला, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढूकिया, दोहती, इनकी ईवा धारणिया। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शिरकत करते हैं हमारे श्रोता मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ और रसीद वारसी। इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा, ग्राम पंचायत पटेना बठेना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता रहेंगे। इन्हीं श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता जुड़ते हैं जो रहेंगे रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान और पूजा परिहार। इन तमाम श्रोताओं के साथ मॉडल टाउन करनाल से हमारे श्रोता रहेंगे सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित शर्मा, बिपसा शर्मा, बिपाशा शर्मा, सोनिया कालका और किरण ठाकुर के साथ रहेंगे जग्गी दुआ, मीनाक्षी तिवारी और तमाम परिवार के सदस्य। लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी, ये तमाम श्रोता रहेंगे रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। इन श्रोताओं के साथ जुड़ते हैं हमारे श्रोता ईमेल के जरिए सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, श्रीमती चंद्रकला रेवाड़ जी। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हमारे श्रोता रहेंगे अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। इन तमाम श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता रहेंगे जिला रतलाम एमपी से मालवा रेडियो श्रोता संघ, ग्राम हिंगड़ी आलोट मध्य प्रदेश के श्रोता जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजू भाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़। इन्हीं श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में हम शामिल कर लेते हैं हीरावाली गांव फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा को। और लीजिए इन्हीं श्रोताओं के साथ मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, पदमपुर पूरे जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से श्रोता जुड़ते हैं। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से हमारे श्रोता रहेंगे राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी, ये तमाम श्रोता रहेंगे दाऊद सराय सहारनपुर से। इन्हीं श्रोताओं के साथ संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार और अर्पिता। इन तमाम श्रोताओं के साथ अगली ईमेल हम तक पहुंची है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की। इन्हीं श्रोताओं के साथ अनार कली वजार जगराओं से हमारे श्रोता रहेंगे सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गाव्या और सुचा सिंह पाठक। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से हमारे श्रोता जुड़ते हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। और लीजिए जनकपुरी सहारनपुर से हमारे श्रोता रहेंगे जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। इन तमाम श्रोताओं के साथ जुड़ रही हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना प्रवीण और अब्दुल्ला आजाद। तो इन तमाम श्रोताओं के साथ आइए सुनते हैं उस गीत को श्रोताओं, जिस गीत के लिए कहूँ तो कभी कभी मोहब्बत किसी हसीन याद की तरह होती है और आप इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मोहब्बत किसी हसीन याद की तरह होती है जो सामने नहीं होती लेकिन हर पल साथ रहती है। उस याद को अगर कोई अपने सबसे खूबसूरत अंदाज में आवाज दे सकता है तो वो दिल की सच्ची धड़कन ही है। यादों के पंख लग जाएं अगर तो हर लम्हा उड़ने लगता है, जो पास होकर भी दूर लगे वो एहसास ही मोहब्बत कहलाता है। श्रोताओं आइए इसी एहसास को इस गीत में

निभाया गया है। संगीत रहेगा आरडी बर्मन साहब का और गीत के शब्द लिखे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने अपनी कलम से। किशोर कुमार की जादुई आवाज इस गीत को और भी सच्चा और अच्छा बना देती है। गीत फिल्माया गया अभिनेता ऋषि कपूर और अभिनेत्री मौसमी चटर्जी पर। तो आइए सुनते हैं जहरीला इंसान फिल्म का ये गीत, 1974 में फिल्म आई।

श्रोताओं, आपके निसंदेह दिल धड़क रहे हैं इस सुनहरे दौर के इन सुनहरे गीतों को सुनकर। मैं कहूं कि दुगनी रफ्तार से आपके दिल आकाशवाणी हिसार को दुआएं दे रहे होंगे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार पर ई फरमाइश का ये अंक। आज के इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ, और कार्यक्रम का श्रोताओं अगला गीत बस इस अंतराल के बाद।

अंतराल के बाद पुनः आप तमाम संगीत प्रेमियों का स्वागत ई फरमाइश के आज के इस अंक में। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे तमाम चाहने वालों को कार्यक्रम के इस गीत में शामिल करते हैं। जिला नांदेड़ एटाला महाराष्ट्र से हमारे श्रोता रहेंगे शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। ग्राम पंचायत कालेगांव मुजफ्फराबाद से हमारे श्रोता रहेंगे श्री सुधाकर जा राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित कुमार, प्रथमेश कुमार, सरवद कुमारी प्रणाली, कुमारी सानवी और कुमारी कल्पना देशमुख। इन तमाम श्रोताओं के साथ किशन सपकाल, आशा सोनिया और विशाल सपकाल शास्त्री नगर बीड शहर से हमारे श्रोता रहेंगे। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता जुड़ेंगे। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कमल। इन तमाम श्रोताओं के साथ गंगाधर पोपलवाड़, प्रियंका समयक और स्वरित, ये तमाम श्रोता रहेंगे विडुल उमरखेड़ महाराष्ट्र से। इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से हमारे श्रोता रहेंगे मोहम्मद जाकिर, मंसूरी, कमरून, निशा, शबिस्ता, मोहब्बत, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी। ये तमाम श्रोता जुड़ते हैं आकाशवाणी हिसार से। जिला हनुमानगढ़ तहसील भादरा गांव कलाना से हमारे श्रोता रहेंगे राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश, योगेश और यूधव कड़वासरा। और सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। मंगल जनागल राही श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल, चक 5 MD पत्रोड़ा से हमारे श्रोता रहेंगे। मोताला महाराष्ट्र से विजय रतनमाला और ओम प्रकाश सलूरकर। करणवीर हाउस भूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिंह, एकम दमन और अभिजोत कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंचोलिया कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। इन्हीं श्रोताओं के साथ बुलढाणा वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमेद दामोदर कार्यक्रम से जुड़ते हैं। बावड़ी गेट जिला भिवानी से रोशन पचेरवाल, उमेश, योगेश, कुलदीप, उपेंद्र, युवान 12 क्वार्टर हिसार से हमारे श्रोता रहेंगे धर्मवीर खटक, प्रेम खटक, कमला बाल्ढा, कार्तिक कायत और तमाम परिवार के सदस्य। इन्हीं श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे श्रोता। जिला हांसी दुर्गा कॉलोनी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से श्रोता जुड़ेंगे मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातुन। गांव हिपरसोगा तहसील औसा जिला लातूर से उस्मान शेख, फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इन्हीं श्रोताओं के साथ कार्यक्रम से जुड़ते हैं।

खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। जोहरी वाड़ा पैठण से चांद मामू, फुरकान शेख, जकिया मोरवे, गुफरान शेख और खुशी मोरवे। इन तमाम श्रोताओं के साथ आइए सुनते हैं उस गीत को। श्रोताओं, 1964 में फिल्म आई कश्मीर की कली। जब प्यार हवाओं में घुल जाए तो मौसम खुद ब खुद मोहब्बत की कहानी लिखने लगता है। तो समझिए मोहब्बत मोहब्बत अपने सबसे हसीन रंग में रंग रही है। बादलों की गरज, बारिश की बूंदें और दिल की धड़कनें सब मिलकर एक ऐसा गीत गुनगुनाने लगता है जिसे हम कहेंगे कि बारिश की हर बूंद में तेरा ही एहसास है, हवाओं में भी छिपा तेरा ही वो प्यार है। जब मौसम खुद दीवाना हो जाए तो समझो इश्क किसी हद तक खास है। तो आइए सुनते हैं शमी कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया मोहम्मद रफी और आशा भोसले की जादुई आवाजों में ये दिलकश गीत, और इस गीत को और भी रंगीन बना दिया संगीतकार ओपी नैयर साहब के इस संगीत ने। तो आइए सुनते हैं कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आपने सुना कश्मीर की कली फिल्म का गीत। आप सुन रहे हैं ये फरमाइश और इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। और आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं। सहावर रोज रोड गंज डुंडवारा यूपी से हमारे श्रोता रहेंगे मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, शमशुल कमर राही। इन तमाम श्रोताओं के साथ कृष्ण कुमार डाभी, भूपत कुमार डाभी, राधा डाभी, विक्रम अर्चना और साक्षी डाभी, ये तमाम श्रोता रहेंगे। रेडियो श्रोता हैं हमारे और गांव टूकिया जिला बालोतरा राजस्थान से ये हम तक ईमेल के जरिए जुड़े हैं। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा सहित रहेंगे कीर्ति वर्मा, सादिक वर्मा, प्रियांशी वर्मा और समस्त वर्मा परिवार के सदस्य। लीजिए श्रोताओं, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हम तक ईमेल पहुंची है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसमा आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी और तमाम परिवार के सदस्य जुड़ते हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, ये तमाम श्रोता रहेंगे गांव लोगढ़ ठाकुरावाला से। इन्हीं श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता जुड़ेंगे ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। इन तमाम श्रोताओं के साथ मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन प्रवीण, रोजी प्रवीण, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कोसर। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से ईमेल पहुंची है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश्वरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी की। इन्हीं श्रोताओं के साथ हम अगली ईमेल हम शामिल कर लेते हैं। हमारे श्रोता रहेंगे रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। इन्हीं श्रोताओं के साथ वारली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान कार्यक्रम से जुड़ते हैं। और लीजिए अगली मेल हम तक पहुंची है गवर कॉलोनी वडवाह जिला खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्री माली की। बेरडी मध्य प्रदेश से संदेश पहुंचा है हुकुम कर्मकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु कर्मकर का। इन्हीं श्रोताओं के साथ गंज डुंडवारा यूपी से हमारे श्रोता रहेंगे मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन नाफरीदी और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव। गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से हमारे श्रोता रहेंगे प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया और तमाम इनके मित्रगण। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव कार्यक्रम से जुड़ते हैं। गांधी चौक बाड़ में राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इन्हीं श्रोताओं के साथ शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ मास्टर, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इन्हीं श्रोताओं के साथ हम शामिल कर लेते हैं हमारे इन श्रोताओं के संदेश को। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर और श्रोता रहेंगे एक रिश्ता रेडियो श्रोता संगम, अंभई तहसील सिलोड जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति और कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुर जिला मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार।

आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरव शर्मा और शायना शर्मा सहित रहेंगे निवान शर्मा। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक गौरैया जलंधर से हमारे श्रोता जुड़ते हैं कार्यक्रम से। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दिव्या निवादा जिला गाजीपुर से हमारे श्रोता जुड़ेंगे कार्यक्रम से। प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और इस गीत के लिए श्रोताओं आपसे कहूं कि मोहब्बत जब हदों से आगे निकल जाए तो सिर्फ एक एहसास नहीं रहती, बल्कि अपने आप में एक कहानी बन जाती है, जिसमें इंतजार भी है, तड़प भी है, बेचैनी भी है और निसंदेह वफादारी भी है। ऐसी ही अमर प्रेम कथाओं में से एक सोहनी महिवाल की दास्तान है, जिसे हर दौर ने अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीके से और अपने अपने हिसाब से महसूस किया है। और शायद जब तक ये जहां रहेगा, ये संसार रहेगा, लोग इसे अपने अपने तरीके से महसूस करते रहेंगे। इश्क वो नहीं जो आसानी से मिल जाए, इश्क वो नहीं जो आसानी से मिल जाए, इश्क वो है जो हर दर्द सह जाए। सदियों से जो नाम अमर रहा वो मोहब्बत नहीं, एक इबादत कहलाए। तो आइए सुनते हैं श्रोताओं शब्बीर कुमार और आशा भोसले जी की आवाजों को। गीत के शब्द लिखे आनंद बख्शी साहब ने और संगीत तैयार किया अनु मलिक ने। तो सुनते हैं सोहनी महिवाल फिल्म का ये सदाबहार गीत, जिसे फिल्माया गया अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री पूनम ढिल्लो जी पर।

श्रोताओं, जैसे तेज पानी का बहाव अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है, इन गीतों की मिठास, इन गीतों की धुन, इन गीतों के शब्द और ये जादुई आवाजें शायद अपने साथ हमें बहा कर ले जा रही हैं न जाने कौन सी मंजिल की ओर। आप सुन रहे हैं ई फरमाइश का ये अंक आज के इस सफर में, आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। श्रोताओं, प्रेम कहानियों की गहराई

यूं ही उतर रही हैं और खो रही हैं इस सुरूर में, जिसे महसूस करते हैं आकाशवाणी हिसार के साथ। आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम का अगला गीत। 1983 में ये फिल्म आई और बड़ा चर्चित ये गीत रहा, बड़ा हिट फिल्म का हिट गीत और हमारे तमाम हिट श्रोताओं के साथ। गांव कुकर थाना जिला सिरसा हरियाणा से हमारे श्रोता रहेंगे रविंद्र नारिया, नायरा, यश, पूजा, सीरत, भूमि, पायल, अंजलि और सुशीला देवी। इन तमाम श्रोताओं के साथ सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हमारे श्रोता रहेंगे रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। इन तमाम श्रोताओं के साथ ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के श्रोता रहेंगे इस गीत के साथ रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब, ये तमाम श्रोता रहेंगे। समस्तीपुर जिला बिहार, समस्तीपुर जिला से हमारे श्रोता रहेंगे बिहार राज्य से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहताश जिला बिहार से ही सोनम सिंह और अनामिका सिंह कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ ये अब शामिल कर लेते हैं हमारे इन श्रोताओं को जो रहेंगे वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कमल। इन श्रोताओं के साथ अगली मेल हम तक पहुंची है बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमेध कुमार की। बुलढाणा वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली और श्लोक कुमार कार्यक्रम से जुड़ते हैं। बठिंडा रोड मंडी डब्बावाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, इन्हीं श्रोताओं के साथ कार्यक्रम से जुड़ रही हैं हमारे ये श्रोता जो लिखते हैं अपनी ईमेल के जरिए अपना भाव हम तक पहुंचाते हैं। और श्रोता रहेंगे शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल, इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं हमारे ये श्रोता। नथुराम शर्मा, ललित शर्मा, इंद्राज शर्मा, सुरेश शर्मा, ये तमाम श्रोता रहेंगे मंडी हरजीराम मलोट पंजाब से। इन्हीं श्रोताओं के साथ रश्मि झरना राजकोट गुजरात से हमारे श्रोता कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, इन तमाम श्रोताओं के साथ। हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़े। नई बस्ती गंजो डुंडवारा यूपी से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी कार्यक्रम से जुड़ते हैं। शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन सब्जी मंडी बुलढाणा से हमारे श्रोता रहेंगे। भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता जुड़ते हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिंपा, ईशान और पूजा परिहार। जय जनेंद्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रत्येश संघई और समस्त संघई परिवार के सदस्य। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौका पैठण से हमारे श्रोता रहेंगे डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल और बेबी सिया जाधव। इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, ये तमाम श्रोता रहेंगे जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। इन्हीं श्रोताओं के साथ हम शामिल कर लेते हैं नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के श्रोताओं को नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार और तमाम परिवार के सदस्यों को। गांधी नगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल हमारे नए श्रोता कार्यक्रम से जुड़ते हैं। दादरी गेट जिला भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और कपिल मेहरा सहित तमाम मेहरा परिवार के सदस्य कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इन्हीं श्रोताओं के साथ गांव उंगाला जिला अंबाला
हरियाणा से।

राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के तमाम सदस्य कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार बरखा, योगेंद्र कुमार, निहारिका, नरेंद्र कुमार और समस्त चिंडालिया परिवार के छोटे बड़े सदस्य। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना प्रवीण और अब्दुल्ला आजाद, इन तमाम श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता रहेंगे। जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फुलवाले, दुखनी सदफ, आरजू, जूही इकबाल फुलवाले, इमरान अहमद फुलवाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फुलवाले और समस्त फुलवाले परिवार के छोटे बड़े सदस्य। तो आइए श्रोताओं, इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम का ये अंतिम गीत रहेगा। श्रोताओं, युवा दिलों की धड़कनों में जब पहली मोहब्बत दस्तक देती है तो हर मौसम हसीन लगने लगता है। पहाड़ों की वादियां, ठंडी हवाएं और दिल में उठती अनकही भावनाएं सब मिलकर एक खूबसूरत प्रेम कहानी रच देते हैं। पहली मोहब्बत का एहसास बहुत खास होता है। हर सपना जैसे हकीकत के पास होता है। दिल की धड़कनों में जब किसी का नाम बस जाए तो हर दिन नया और हर मौसम मधुमास होता है। तो आइए सुनते हैं सुपरहिट फिल्म 1983 में आई आरडी बर्मन साहब का सुपरहिट संगीत रहेगा। आनंद बख्शी साहब ने गीत के सुपरहिट शब्दों को लिखा और भाई सुपरहिट आवाजें शबीर कुमार और लता मंगेशकर की, तो फिल्म भी सुपरहिट रहेगी बेताब। तो आइए सुनते हैं पहली मोहब्बत की उसी मीठी खुशबू को और फिल्म रहेगी बेताब। कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति आकाशवाणी हिसार की ओर से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बेताब फिल्म का गीत। अमृता सिंह और सनी देओल पर इस गीत को फिल्माया गया है। शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर आकाशवाणी हिसार पर सुने जा रहे हैं।

श्रोताओं, सुनहरे दौर के ये गीत आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं क्योंकि उनमें सच्चे जज्बात बसते हैं। पुराने गीतों की ये महक आज भी आती है, दिल की किताब में यादें सजाती है। मोहब्बत का वो सुनहरा दौर भले गुजर गया हो लेकिन उसकी धुन आज भी दिल को गुनगुनाती है। श्रोताओं, अब कार्यक्रम समेटने की फरमाइश आपने आज के इस सफर के हम सफर शिवानंद वाशिष्ठ को दे अनुमति। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुनते रहें, जुड़े रहें आकाशवाणी हिसार से। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एम्प्टी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के

0: ये आकाशवाणी हिसार है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
2: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ, और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद आपका।
2: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
3: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां।

0: उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
0: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और ये भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी। चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
0: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग

0: आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
1: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं, और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
0: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
1: देखिए, एक तो संकट है
0: जिसको इतिहास याद रखेगा,
1: 25 करोड़। देखिए, इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि ये दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी? कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं, और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
0: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? एलओपी तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल के लिए चले
1: जाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
0: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
1: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 देख जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
0: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
1: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। सीबीआई को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
0: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा
1: अंतर यह है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है, और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
0: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
1: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़, नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
0: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
1: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
0: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन?
1: हकीकत तो ये जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है।

0: बिहार, हकीकत से दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं, लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूं।
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को कैसे देखते हैं?
0: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उनके लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे, और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय

0: जज फहराते हुए कि हम भी तीन गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूं और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम तीन मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो तीन बड़े लक्ष्य हमारे, एक देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है, दूसरा पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: अल नैनो की भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग हैं जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने AI के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया है उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी AI की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूं, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहां पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहां कम संभावना है, कहां ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन में ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की, एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश इसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा

0: मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ। जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो काम करो काम करो, चलते रहो, चरेवेती चरेवेती चरेवेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरेवेती चरेवेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय। तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
4: धन्यवाद।
3: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनर्जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो ये है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई, या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाए और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाए, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहां से भारत के राज का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की, जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप के किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज्यादा बेहतर है, उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था उस सबको अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
3: सर आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं, और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने भी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे और उसको भी संस्कृति मंत्रालय आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
4: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहां पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहां पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
3: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेंजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
4: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे और वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए। जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, तो वहां पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के, नेताजी के नाम से द्वीप हुआ। जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनः जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल है या जो पुरातत्व स्थल है उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एम्यूनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहां के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है, और वहां पे हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहां पे जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है, ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप, अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉक यार्ड था, पूरा मैरिटाइम सिस्टम था, वेयर हाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो

0: भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेनजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे। और आज जब आप इस दौर में है, संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर है, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
0: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई है और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं, तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है, बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है, उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूं कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहां भारत कोई स्टैंड लेता है, तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था, महिलाओं की लिए सामने आ रहा है वही संस्कृति, आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीमा ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाश

आकाशवाणी दिल्ली से विशेष कार्यक्रम एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी हिसार है। इस समय रात्रि के 11:46 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह प्रथम सभा के अंतर्गत 5:53 पर आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद।